मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 5:39 और 3 सेकंड। भोर सुहानी का सफ़र आप तय कर रहे हैं मेरे यानी मंजू के साथ। ये वो समय है जब हमारा मन सबसे ज़्यादा शांत होता है और जब हमारा मन शांत होता है तो हम खुद के बहुत नज़दीक होते हैं और जब हम खुद के नज़दीक होते हैं तो ईश्वर तक पहुँचना आसान हो जाता है। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

सुख के सब साथी दुख में ना कोई, कितना बड़ा और कड़वा सच पिरोया है इस भजन में। ये संसार भी कितना विचित्र है ना। जब हमारे जीवन में सुख की धूप खिलती है, जब सफलता हमारे कदम चूमती है, तो अपनों का चाहने वालों का मेला लग जाता है हमारी ज़िंदगी में। लेकिन जैसे ही दुखों का साया मंडराता है, जैसे ही कठिन परीक्षा की घड़ी आती है, तो एक एक करके सब साथ हमारा छोड़ जाते हैं। लेकिन एक ऐसा सहारा भी है जो कभी नहीं छूटता। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी उस ईश्वर का द्वार हमेशा हमारे लिए खुला रहता है।

क्या अद्भुत और निष्पाप भाव है इस प्रार्थना के। जब भी ये पावन स्वर गूंजते हैं, मन की सारी कलुषता, सारा अहंकार अपने आप बह जाता है। हम ईश्वर से जीवन में कितनी सारी चीज़ें मांगते हैं, सुख, संपत्ति, मान सम्मान, लेकिन इस प्रार्थना में जो मांगा गया है वही जीवन का असली सार है। केवल इतना सा वरदान कि चाहे राह में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमारा कदम कभी सत्य और नेकी के रास्ते से ना भटके। जब मन में सच्चाई होती है तो ईश्वर खुद ब खुद हमारा हाथ थाम लेता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेन जी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं, इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग शू और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शू श्यान को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana.

सोचिए महीने के आखिर में जेब खाली हो और अचानक से कहीं से कुछ पैसे मिल जाए, तब जो खुशी होती है उसका तो ठिकाना ही नहीं रहता। शुक्रवार को भारतीय बैडमिंटन फैंस को ऐसी ही खुशी का, हर्षोल्लास का एहसास हुआ। बुधवार और गुरुवार पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन जैसे प्रबल दावेदारों को हारता देख मानो मायूसी का अंधेरा छा गया था, लेकिन

0: फिर रोशनी की ऐसी खिड़की खुली जिसकी कल्पना बैडमिंटन के प्रकांड पंडितों ने भी नहीं की थी। जी हाँ, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2026 में भारत का एक पदक सुनिश्चित हो चुका है। ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने ये पदक वुमेन्स डबल्स में हासिल किया है, एक ऐसी कैटेगरी जहां इससे पहले पदक 2011 में यानी 15 साल पहले ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पुनप्पा की जोड़ी ने भारत को दिलाया था। ट्रीसा ने कहा,
1: Finally this happened and obviously really happy that we converted this win into this semi-finals and getting a medal, but that's not stopping it. There is matches are coming tomorrow also. Obviously I want to thank the crowd people. I think the crowd was amazing today. That was really giving that positive vibes to us.
0: इस पदक की महक सूखे के बाद पड़ने वाली पहली बारिश जैसी इसलिए भी है क्योंकि ट्रीसा और गायत्री का ये साल मुश्किलों में कटा है। अप्रैल में ट्रेनिंग के दौरान ट्रीसा के टखने में लगी चोट के चलते ये जोड़ी ना ही एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप खेल पाई और ना ही प्रतिष्ठित ऊबर कप में हिस्सा ले पाई।
1: बिफोर एशियन चैंपियनशिप आई गॉट इंजर्ड 3 डेज बिफोर, दैट वाज काइंड ऑफ ऑब्वियसली इट्स बीन सैड एंड इमोशनल एंड काइंड ऑफ मिसिंग दोस मेजर टूर्नामेंट्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड ऑल दोस मोमेंट्स आई मिस्ड। आई थिंक दोस टाइम्स there is so much of ups and downs that these many years that we all went through, now it's we are in a great shape and we just want to continue that.
0: यहाँ भी क्वार्टर फाइनल में चुनौती कड़ी थी। सामने चीन की मजबूत जोड़ी थी जिसका एक हिस्सा थी प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी चांग शू शियान और दूसरी थी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाली जिया यी फान। और शुरुआत भी ऐसी हुई, जब तक ट्रीसा और गायत्री अपने रंग में आती तब तक स्कोर 9-2 का हो चुका था, लेकिन फिर भारतीय जोड़ी ने 6 पॉइंट लगातार लिए। इसके बावजूद वो पहला सेट 21-16 से हारी। गायत्री बताती हैं,
2: फर्स्ट गेम के बाद थोड़ा टैक्टिक्स चेंज किया हमने, स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिकी था पर आई थिंक थोड़ा काम रह के हमने निकाल लिया। We don't want to reveal too much of the strategy, but we were just rotating, we just wanted our legs to move.
0: पर कोर्ट साइड पर बैठे मेंटोर और गायत्री के पिता पुलेला गोपीचंद और कोच बी सुमित रेड्डी ने सिर्फ एक ही मूल मंत्र दिया, स्टे काम।
1: He always said like just calm down and just be in the present moment. I think that really worked today. That's the kind of advice he gave behind us.
0: दूसरे सेट में कांटे की टक्कर हुई, स्कोर 15-14 तक पहुंचा और उसके बाद गायत्री और ट्रीसा ने मानो टॉप गियर डाला, 6 पॉइंट लगातार जीतते हुए 21-15 से वो सेट अपने नाम कर लिया।
1: The crowd was so amazing. The crowd that gave us that confidence even we lost the first game also. They were in full josh that come on girls, you can do this and I think that really helped us.
0: तीसरे सेट में चीनी जोड़ी ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत की, भारतीय जोड़ी 1-4 से पीछे थी और फिर 8 पॉइंट लगातार ट्रीसा और गायत्री ने लिए और अंततः इस मुकाबले को 21-13 से जीता। इस जीत पर कोच सुमित रेड्डी ने कहा,
3: मैच आज का तो बहुत अच्छा गया है, जैसा लड़कियां ने खेला हम तो बहुत ही खुश है एंड उसके साथ मेडल आ गया, आई थिंक वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दोनों बहुत ही बेहतर खेले, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग खेले, इतने हजारे लोगों के बीच में खेलना मजाक की बात नहीं है, तो आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंस खेले।
0: इस जीत के बाद सेमीफाइनल का टिकट कन्फर्म हो गया है, यानी ब्रॉन्ज मेडल आना सुनिश्चित है, लेकिन उससे मन कहाँ भरने वाला है तो सबके मन में एक ही सवाल है,
4: गोल्ड आएगा
3: वो कल देखेंगे। कल का हम अभी ओपोनेंट्स का भी मैच देखना है, देख के हम ऑब्वियसली बोलेंगे हमारा प्लेयर्स को कि मोस्टली ओपोनेंट्स क्या करने वाले हैं एंड आई थिंक गोपी सर ऑलरेडी मैच से पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो गोपी सर के साथ एक बार डिस्कस करने के बाद आई थिंक उसके हिसाब से सर प्लान करके बोलेंगे।
0: सेमीफाइनल में सामने होने वाली है पहली वरीयता प्राप्त चीन से ही आने वाली ल्यू शेंगशू और टैन निंग की जोड़ी, जिससे पहले भी ट्रीसा और गायत्री 6 बार हार चुके हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीतना अब इस जोड़ी की फितरत है और इसलिए शनिवार को होने वाले सेमीफाइनल का हमें बेसब्री से इंतजार है। शाम होते होते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शोर बढ़ने लगा क्योंकि अब बारी थी बीते वर्षों में दो बार वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में पदक लाने वाली सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी की।

0: ये जोड़ी भी पिछले कुछ महीनों में चोट से जूझती आई है। वही सात्विक की लंबे समय से तंग करने वाली कंधे की चोट।
1: I'm just managing myself, so sometimes I feel very good in the one tournament, the next day I feel very tight, the next day I feel very worse, the next day I feel like 100%, so it's kind of complicated with my shoulder, but I just need to manage myself and play.
0: हालांकि क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार को सामने कई मौकों पर भारत के लिए सिरदर्द बनी चीन की लियांग और वांग की जोड़ी थी। थॉमस कप, मलेशियन ओपन, चाइना मास्टर्स, हर बार ये प्रतिद्वंद्वी भारतीय जोड़ी के आड़े आए हैं, लेकिन गड़गड़ाती तालियों के बीच और भारतीय फैंस की हौसला अफजाई के समक्ष रंकी रेड्डी और शेट्टी ने एक अच्छी शुरुआत की। पहले गेम में 18-16 से लीड भी बना ली थी, लेकिन उसके बाद पासा ऐसा पलटा कि धीरे धीरे दर्शक दीर्घा से आने वाली आवाज कम होती गई और अंत में एक हताशा भरी चुप्पी में तब्दील हो गई। 18-16 से पिछड़ने वाली लियांग और वांग की जोड़ी ने 5 पॉइंट लगातार लेकर पहला गेम जीता और दूसरे गेम को तो एक तरफा ही बना डाला। 21-9 से जीत हासिल की और महज 36 मिनट में इस मुकाबले को 2 सीधे सेटों में जीतकर सेमीफाइनल का टिकट बुक कर लिया।
1: They were quite good in the first 4 shots. Whoever controlled the first 4 shots in the first set, we are controlling it. They got confident after 1 or 2 points. So if it is rally game, it's anybody's game. It's 50-50 because both have the attack. The Chinese can attack as well. We can attack as well. But the difference was only the service and service return. They got that spin, so he got little bit confident in that towards the end. He started spinning differently rather than the first one. After second game, I think they got pretty much confident. They are everywhere, wherever you are hitting, they're just playing their game. So I think, yeah, kudos to them. But we could have put a little bit more tighter from our side. But I think we'll go back and learn what we did miss.
0: हार के बाद मायूस चिराग शेट्टी ने कहा,
2: पहला गेम काफी अच्छा था, 18 तक हम लीड भी कर रहे थे, जो गेम प्लान हमने सेट किया था वो काफी अच्छा वर्क भी कर रहा था। After we lost the first game, they came back a lot more harder in the second game. We played decent, I wouldn't say we played bad, but जहाँ पर हमको लगा कि हमें पॉइंट मिलेगा, मिल नहीं पाया क्योंकि they were playing quite a solid game, a lot of the points. हमें लगा फिनिश हो जाएगा, वो फिनिश हुई और काफी अच्छे से उन लोग उसको ऑफेंस में कन्वर्ट कर रहे थे। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट I think that is how sport is.
0: शनिवार के दिन इंदिरा गांधी इंडो स्टेडियम के कोर्ट 1 में सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे, जहां भारतीय प्रशंसकों की नजरें गायत्री और ट्रीसा के मैच पर होंगी, तो वहीं वुमेन्स डबल्स के दूसरे सेमीफाइनल में चीन की ली और लुओ के सामने होंगी दक्षिण कोरिया से आने वाली पूर्व नंबर 1 बेक और ली की जोड़ी। महिलाओं के एकल वर्ग में 2 दिग्गजों के बीच मुकाबला होगा, चीन की वांग ज़ीयी के सामने होंगी मौजूदा ओलंपिक चैंपियन आन से युंग, जिनका पूरी तरह से फिट ना होने के बावजूद भी इस टूर्नामेंट में दबदबा कायम रहा है। युंग कहती है कि उनका फोकस प्रतिद्वंदी पर नहीं, उनके खुद पर होता है।
3: My goal is to achieve a great result any tournament. Yeah, I just focus on myself and one point at a time.
0: दूसरे सेमीफाइनल में दिखेंगी थाईलैंड से आने वाली पोर्नपावी चोचुवांग, जिनको क्वार्टर फाइनल में वॉकओवर मिला, उनके सामने जापान की अकाने यामागुची होगी। पुरुषों के सिंगल्स में चाइनीज ताइपे के चाउटिन चांग जापान के कोडाई नारोका को चुनौती देंगे, तो दूसरे सेमीफाइनल में कनाडा के विक्टर लाई के सामने होंगे फ्रांस के एलेक्स लानियर, जो कांस्य पदक जीतने से ही बहुत खुश हैं, लेकिन पदक का रंग बदलने के लिए भी उतने ही उत्सुक।
4: I want to change the color of the medal definitely, and I'm also excited about tomorrow.
0: Producer Shahnawaz Khan aur editor Vandana ke saath Indira Gandhi Stadium se Mohammad Shahid Azmi ki khas report liye Akashvani ke liye main Darpan Tikiya. Yeah, shor macha le o Delhi jab shakal hawa mein uchle yahan. Shor macha le o Delhi jab shakal hawa mein uchle yahan. అదండి, ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి ప్రసారమైన బ్రాడ్కాస్ట్ డైలీ రిపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ ద బీడబ్ల్యూఎఫ్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ 2026. మీరు వింటున్నది ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం 101.9 మెగా హెడ్స్ లో. మనమంతా హెల్దీ మార్నింగ్స్ లో ఉన్నాం.
5: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి డిక్లరేషన్ ఫామ్ తో పాటు ఫామ్ 6, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి సెప్టెంబర్ 16 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ERO, AERO లేదా BLOకు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.

kind of is a connection. Language has always been a connection. When I say something in English, it sounds very different, but when I say something in Hindi, I would say, kya kar rahe? Or I would say, what you doing? It's very different. So, kya kar rahe aaj aap? Radio sun rahe? अरे सुन रहे तो 11 बजे से सुपर बॉलीवुड के गाने आते, आप और मैं साथ में सुनेंगे। कुछ मैसेज करना है तो 9140232343482 पे करना है, समझ गया ना? सो यस, स्टे ट्यून्ड, दिस इज आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। रेनबो इट्स कलर स्टे अलाइव, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग कमिंग अप राइट नेक्स्ट, एंड वी गोना स्विच टू हिंदी के गाने, विच मीन्स बॉलीवुड के गाने, बस कुछ ही देर में। तब तक के लिए ट्रीट यू बेटर बाय शॉन मेंडेस, टेक इट अवे।

0: Hey, very hungry. What's special today?
1: Biryani, kebabs, haleem. But wait, there's more.
2: More than food, it's the stories behind the recipes. The history of the kitchens and the flavors that shaped our city.
0: And where do we taste all these?
1: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
2: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
3: जश्न-ए-हैदराबाद,
4: सेवर द सिटी सोल। जश्न-ए- हैदराबाद में खाने के बारे में, जायके के बारे में और क्या क्या तो भी बातें होती है, लेकिन ये शो जो हमारा शो है वो बॉलीवुड का धमाका है। बहुत सारे एक्टर्स, मूवीज़, गाने, इन सब के बारे में बात होती है, लेकिन एक फिल्म है, इसका नाम है इंग्लिश विंग्लिश, जहाँ एक सिंपल सी हाउसवाइफ जाती है अमेरिका। तब कुछ दिल में घबराहट होती है, कुछ अलग सा ही महसूस होता है। आपको कभी हुआ है ऐसा कि आप एक नए जगह में गए हो और कुछ भी पहचानत का नहीं हो, कुछ सब कुछ अलग अलग नज़र आ रहा हो और कुछ डर सा लग रहा हो, लेकिन थोड़ा एक्साइटमेंट हो। जब कहते हैं जियारा धाक धुक, गाना वही है। टेक इट अवे, दिस इज फ्रॉम इंग्लिश विंग्लिश, फॉलोड बाय स्टम्प्ड, अ रिले फ्रॉम दिल्ली विद आकाशवाणी एंड बीबीसी इंटरनेशनल। टेक इट अवे।

ओरिजिनल ओरिजिनल एस्पेक्ट, क्या ओरिजिनलिटी है? वेल, 1995 में रंगीला था एआर रहमान का डेब्यू बॉलीवुड का ओरिजिनल साउंड ट्रैक। यानी इससे पहले आप कह सकते हैं कि रोजा आया था या कोई और फिल्में आई थी, लेकिन रोजा वाज डब्ड फ्रॉम अ तमिल वर्जन एंड देन तेलुगु एंड देन हिंदी, लेकिन ओरिजिनल हिंदी स्कोर था दिस रंगीला। व्हाट एन ऑसम कॉम्पोजिशन इन डी, डायरेक्टेड बाय राम गोपाल वर्मा एंड द म्यूजिक गिवन बाय ए आर रहमान। 5 दिन गोवा के एक होटल में बैठ के उन्होंने ये म्यूजिक बनाया। और यू नो देर सो मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स अबाउट दिस मूवी एंड द सॉन्ग्स इन डीड। बट मूविंग ऑन, अभी हम चलते हैं न्यूज़ की ओर, उसके बाद विल बी राइट बैक विद अ बॉलीवुड धमाका। सो स्टे ट्यून्ड, दिस इज आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो स्कॉलर्स टू योर लाइफ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगे। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। 57वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है ताकि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकासोन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल ने की। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। आज एक हैप्पी वाला बर्थडे है हमारे मेगा स्टार चिरंजीवी गारू का। बहुत सारे तेलुगु फिल्मों में एक्ट किया है उन्होंने, 150 से ज़्यादा। लेकिन हिंदी बॉलीवुड मूवीज़ में प्रतिबंध, अगर आप याद हो, 1990 में, या आज का गुंडा राज, मतलब बिगेस्ट तेलुगु ब्लॉकबस्टर्स जो हिंदी में डब किए गए थे। एंड इंडीड, लेकिन माय फेवरेट यू नो चिरंजीवी गारूज मूवीज़ आर रुद्र वीणा एंड आई थिंक स्वयं कृषि। उसके बाद कम्स इंदिरा एंड ऑफ कोर्स यू नो स्टालिन, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन। वी विश हिम अ वेरी वेरी अमेजिंग वंडरफुल बर्थडे। एंड ही इज ऑल्सो वंडरफुल फिलैंथ्रोपिस्ट एंड डज अ लॉट फॉर द सोसाइटी इंडीड। एक और खूबसूरत गाना बाय ए आर रहमान एंड मोहित चौहान, दिस इज कुन फाया कुन। हियर इट वी गो एंड टेक इट अवे।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। नॉस्टैल्जिया में हमारा दिल कभी खो जाता है, यानी नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी वाली बातें, पुराने वाले गाने। लेकिन आजकल मूवीज़ री रिलीज हो रही हैं। ऑफ कोर्स टॉलीवुड में हमने देख ही लिया है कि मज़ेदार फिल्में और एक बार फिर एक बार हमारे नए मतलब आविष्कार किए हुए थिएटर्स में, यानी रिक्लाइनर्स, खाना मंगवाना, वो सब फैसिलिटीज़ के साथ ये फिल्में फिर रिलीज़ हुई हैं और बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया है। अभी हाल ही में मैंने देखा कि आवारापन भी रिलीज़ हुआ है। मतलब ये नॉस्टैल्जिया का आवारापन ख़त्म ही नहीं होता, कितने भी अच्छे फिल्में रिलीज़ होते हैं। शायद हम कोविड के टाइम पे घर पे थे और बहुत सारे मूवीज़ हमने दोबारा बार बार हमारे फेवरेट फिल्में देखी, लेकिन अभी ये री रिलीज़ जो हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग इसमें भी बावले हो रहे हैं, है ना। तो कोरियन फिल्म, साउथ कोरियन फिल्म अ बिटर स्वीट लाइफ का रीमेक है ये, इमरान हाशमी और श्रिया सरन, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी इंडीड। एंड मूवी से ज़्यादा आई जस्ट लव द सॉन्ग्स। कमिंग अप राइट नेक्स्ट इज माहिया फ्रॉम आवारापन। इट्स अ क्रेजी क्रेजी गाना, टेक इट अवे।

राइट, वेलकम बैक. मालूम था मुझे कि व्हाट्सएप पर आप दरख्वास्त भेजेंगे किसी और गाने का इसी फिल्म से. आई न्यू इट, आई एब्सोल्युटली न्यू इट. तो वेल, एक और मैसेज आया है. प्लीज़ प्ले तेरा मेरा रिश्ता फ्रॉम आवर अपन एज वेल. ऑफ कोर्स आई विल, आई विल. हुदा का मैसेज आया है बाबा नगर से. हाय जयश्री जी, कैसे हैं आप? मैं तो मस्त हूँ हुदा. एक सॉन्ग लगाइए ना प्लीज़. ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माई बेस्ट. वो गाने का नाम भी दिया है, लेकिन मैं ढूंढने के बाद मैं कंफर्म करूँगी कि वो गाना प्ले हो सकता है कि नहीं. एंड यस, सरवर अली साहब मैसेज भेजे हैं एंड एक गाने का रिक्वेस्ट भी भेजा है. ऑफ कोर्स मैं 1 o'clock हेलो रेनबो में ये सारे दरख्वास्त जो है प्ले करने वाली हूँ. तब तक के लिए अगर आप मुझे मैसेज करना चाहेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं. 9140232342 मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है. फ़ोन इन तो शुरू होगा 1 बजे. कमिंग अप राइट नेक्स्ट इज़ तेरा मेरा रिश्ता फ्रॉम आवर अपन. टेक इट अवे.

0: కళలు, సాహిత్యం, శాస్త్ర విజ్ఞానం, ప్రజాసేవ, క్రీడలు, ఇలా ఏ రంగంలోనైనా అపూర్వ అసాధారణమైన సేవలందించిన ప్రతిభామూర్తులకు భరతమాత అందించే అత్యున్నత పురస్కారం భారతరత్న. ఈ అద్వితీయ గౌరవం అందుకున్న మహనీయుల జీవన రేఖలని, ఆయా రంగాలలో వారు అందించిన విశిష్ట సేవలని వివరిస్తూ ఆకాశవాణి వివిధ భారతి ఎఫ్ఎం 102.8 మెగాహెడ్స్పై ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు శ్రోతల కోసం సమర్పిస్తున్న ప్రత్యేక ధారావాహిక భారతరత్న.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन. एंड यस यस यस, क्या बताएं आपको कि कुछ बताना था ये बताना था कि मतलब शर्म आती है मुझे बार बार बताने में, बहुत बुरा लगता है, लेकिन ट्रैफिक के रूल्स अगर हम फॉलो ना करें तो कैसे चलेगा. 20 साल से बोलते आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस भी, सेकेंड डिकेड फॉर एक्शन फॉर रोड सेफ्टी हो रहा है अभी 2021 to 2030. ये बस यही है ज़रिया कि हम अवेयरनेस रेज करें और जो भी रोड सेफ्टी मेजर्स है वो फॉलो करें. सीरियस इंजरीज होते हैं, रोड क्रैशेस होते हैं, एंड आपको पता है कि आपकी लाइफ से कीमती कुछ नहीं है यार. बस हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट बकल करना है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना है आपको, और हमेशा हमेशा ध्यान रखिए कि घर सेफली पहुंचना है एंड हमारे लिए जो भी इंतज़ार कर रहे हैं उनके पास सेफली जाना है. और बिलो एज के लोग भी आजकल विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइव कर रहे हैं. गलियों में मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे स्कूटर ड्राइव करके जा रहे हैं. क्या है ये, पेरेंट्स बिल्कुल नहीं अलाव करें, आप उसमें तशन नहीं दिखाएं या ऐसे प्राउड फील ना करें अगर आपके बच्चे बिलो 18 इयर्स है और वो ड्राइव करने चले तो. आसान नहीं है, एक गाड़ी मशीन है यार, पहिए है उसके, पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो प्लीज़ डू नॉट अलाव योर किड्स टू ड्राइव इफ़ दे आर नॉट लाइसेंस्ड एंड इफ़ दे आर नॉट एज द एज पावर वेयर दे कैन ड्राइव, है ना. एक एक रूल है, रूल्स हमारे लिए तो बने हैं और हमारे अच्छे के लिए तो बने हैं. बहुत दुख होता है जब हम न्यूज़ में देखते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है. रोड सेफ्टी, अगर शायद, काश, ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं कि काश उसने ऐसा किया होता, काश उसने वो हेलमेट पहन लिया होता, काश उसने ध्यान से चलाया होता. तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात. ऑफकोर्स समझदार को इशारा काफ़ी है, आप तो समझ गए होंगे. अगर आप किसी को देख रहे हैं जो सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हो या हेलमेट नहीं पहन रहे हो, बिल्कुल रोकिए, टोकिए और उनको बोलिए, क्योंकि खैरियत रहना है हमें. अगला गाना भी वही है, खैरियत बाय अरिजीत सिंह, टेक इट अवे.

0: क्या मस्त मूवी है, सीरियसली मस्त मस्त मूवी, मस्त गाना, क्या ही बताएं, है ना। चलो एक गाना है ये उन सारे तमाम लिसनर्स को के लिए जो बहुत गुमसुम है, बहुत चुप चुप है क्योंकि मैसेज नहीं कर रहे मुझे। वेल दिस सॉन्ग इज गुमसुम हो क्यों, वेल दिस इज बाय शान। बहुत ही खूबसूरत गाना है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद इस गाने को सुनते हैं हम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो एड्स कलर्स कलर्स कलर्स टू योर लाइफ।
1: Hey, very hungry. What's special today?
2: Biryani, kebabs, haleem. But wait, there's more.
1: More than food, it's the stories behind the recipes. The history of the kitchens and the flavors that shaped our city. And where do we taste all these?
2: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
1: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
3: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.

ऑलराइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन. 1 बजे हमारा हेलो रेनबो शुरू हो जाएगा, जहां आप फोन करेंगे. फोन इन प्रोग्राम है लाइव, लेकिन बात ही क्या करेंगे. बिल्कुल, हैदराबाद की शान क्या है ये पूछना था. क्या हैदराबाद की शान उसकी रानी चाय है, चार मीनार है, शॉपिंग है, या ज़्यादा सा ट्रैफिक है, या क्या है हैदराबाद की शान, या हम खुद है हैदराबाद की शान, बताइएगा. बहुत सारी बातें होंगी, पक्का लोकल वाली बातें. तो स्टे ट्यून्ड, कहीं जाइएगा मत. हमें कॉल करने के नंबर्स तो आपको पता ही है, मैं फिर एक बार दोहरा देती हूँ, वो भी 1 बजे. अभी ये खूबसूरत गाना आपके लिए, पल पल दिल के पास, बहुत ही अमेजिंग गाना है जो रिक्वेस्ट में आया है. एंड हियर वी गो.

0: ये हाओ नको ये जो बातें हैं ना, बहुत बहुत कहीं भी पहचान मिल जाती है कहीं भी जाओ।
1: अरे यहाँ भी नहीं, अब्रॉड अमेरिका में भी कहीं पे भी हाओ नको टमाटर।
0: जी हाँ, और अमिताभ बच्चन का जो देशप्रिय में भी गाना है ना, किशोर कुमार का गाया हुआ, बाता नहीं करते हम हैदराबादी ऐसा।
1: सुपर सुपर, आज तो
0: हमारी
1: मैं
0: एक
1: कुछ
0: रिक्वेस्ट
1: ज्यादा ही
0: सुना दी।
1: तार छेड़ दी, आपका रिक्वेस्ट अभी अभी प्ले कर रही हूँ मैं।
0: ओके मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो कीमती वक्त दिया आप।
1: थैंक यू सर अली साहब, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल सॉन्ग, हमारा रिक्वेस्ट है सर अली साहब से, लेट्स प्ले इट एंड टेक इट अवे।

0: राइज क्लॉक में हो रहा है 1:20 और हमारे कॉल्स यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। एक और बार मैं आपको याद दिला दूँ हमारे नंबर्स। वेल, दिस इज़ हेलो रेनबो, हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। अगर आप मुझसे रूबरू होना चाहते हैं, कोई बातें करना चाहते हैं, हैदराबाद की शान है क्या ये बताना चाहते हैं, सो 2323-0030, 2323-4821, 2970-4715, ऑफ कोर्स आपको 040 ऐड करना होगा। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो रेनबो,
1: हेलो रेमबो, गुड आफ्टरनून। आदाब बेकरी जी,
0: गुड आफ्टरनून शेर खान साहब, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आपकी दुआ, और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। बिल्कुल,
0: मस्त हूँ मैं। आपका बर्थडे कैसा हुआ?
1: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सारी दुआएं मिली।
0: जी
1: सिर्फ मैं तो दुआएं उसके लिए ही मनाता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं, फूल नहीं, केक नहीं। वो पहली बार मैं जब इन बाजी ने बना लिए थे मेरा
0: जी
1: बर्थडे,
0: जी
1: तो ये कुछ सालों से ही, ये मैजबिन बाजी, आयशा सिद्दीका, लक्ष्मी आरती, ये सब से इनसे हमारा रिश्ता जुड़ा है, भाई बहनों का। तो इन
0: ओके
1: लोग जब से मेरा बर्थडे मना रहे हैं, वरना मुझे खुद को कुछ भी नहीं मालूम था पहले, तो ये
0: वेरी
1: रिश्ता है ये।
0: नाइस,
1: और सभी सुनने वाले भाई बहनों दोस्तों को भी मेरा प्यार भरा सलाम आदाब है। अल्लाह सबको
0: ब्यूटीफुल,
1: खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे, आपको भी। और हैदराबाद की शान, खुद हैदराबाद ही है इंडश्री जी।
0: हाँ
1: मैं ज्यादा मैं तो घुमा नहीं हूँ, मैं गया था चार मीनार पे, मक्का मस्जिद में जाके बैठा, वहाँ भी बहुत सुकून लगा। और गंडी पेट जो बोलते हैं, वहाँ पे लेके गए थे हमारे दोस्त, वहाँ पे लगा। और यहाँ की जो लहजा है मुझे बहुत पसंद आता है, और मोहब्बत वाले, खुलूस वाले जो यहाँ पे इंसान है, और आप लोगों से जो दुआओं वाला रिश्ता जुड़ा है आपसे, और दूसरे भी जो दोस्त बने, भाई बहन बने यहाँ पे, आने सारा हैदराबाद ही है, तो बरकत वाला शहर है,
0: वंडरफुल
1: बरकत
0: वंडरफुल
1: वाला शहर।
0: वंडरफुल,
1: इसकी शान खुद यहाँ के आदाब और अखलाक है, हैदराबाद की
0: सही
1: शान,
0: बात है।
1: यहाँ के
0: और
1: लोग।
0: मतलब कितना कितना डाइवर्स है, इतने सारे कल्चर्स, इतने सारे रिलीजन्स और इतने सारे लोग, इतनी सारी भाषाएं, फिर भी हम एकता के साथ मतलब मस्त मस्त जुड़ के रहते हैं। कोई भी त्योहार हो मस्त सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू सो मच शेर खान साहब,
1: जी
0: आपने
1: जी
0: कॉल
1: बहुत,
0: किया।
1: यही आदाब अखलाक और यहाँ का लहजा, बात
0: जी
1: बात भी
0: जी
1: बहुत पसंद आती है मुझे। और जिनसे भी दोस्ती भाईचारा जो भी होता है, वो भी दिल से निभाते हैं, यानी बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल अपनों की तरह, पराये वाला व्यवहार नहीं लगता, अपनों वाला सलूक लगता है बिल्कुल भी। और
0: जी
1: मैं
0: सही
1: अपनी
0: बात,
1: मुमताज बाजी को भी सलाम कहना चाहूंगा।
0: जी जी
1: और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे गाने की,
0: जी
1: केसरी जी, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज में है। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना, जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी कसम, हमें याद रखना।
0: बिल्कुल, मैं प्ले करूंगी आपके लिए। थैंक
1: शुक्रिया
0: यू
1: जयश्री
0: सो
1: जी, आप भी
0: मच,
1: वक्त दिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल राइट, एक और खूबसूरत गाना चलिए सुनते हैं ये वाला, लेकिन उससे पहले मैं भूल कैसे गई, एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।
2: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి డిక్లరేషన్ ఫామ్ తో పాటు ఫామ్ 6, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి సెప్టెంబర్ 16 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఈఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా బిఎల్ఓకు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9। बहुत ही हंसमुख गाने बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट हमें बहुत नए नए गानों के साथ परिचय कराते हैं। खातून की खिदमत में किशोरदा की आवाज़ में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जी ने एक्ट किया है, और ये फिल्म है देश प्रेमी। चलिए हम ये वाला गाना सुनते हैं। राइट हियर राइट नाउ, स्टे ट्यून्ड।

ऑलराइट, क्या मज़ेदार गाना था। थैंक यू सो मच। अभी समय समाप्त, वक्त की पाबंदी, बहुत सारी बातें की हमने, लेकिन सैटरडे के दिन बस आप उदास मत रहिए, खुश रहिए, क्योंकि संडे को आराम कर सकते हैं। मैं बताती हूँ, ये वीकेंड वीकेंड जीना आप छोड़ दीजिए, हर दिन खूबसूरत है ना। चलिए, हैदराबाद की शान के बारे में बातें बहुत कर ली हमने। अभी हमारे साथ जो रेडी है, आरजे जो, और बहुत सारी बातें करने वाली हैं उनके साथ। जुड़े रहिए, बने रहिए जश्न हैदराबाद में। तब तक के लिए मैं यहाँ से इजाज़त चाहती हूँ। एक बार और देख लेते हैं हमारे मैसेजेस की ओर। तो खातून की खिदमत बिल्कुल हमने प्ले कर दिया है, और अश्विन जी ने मैसेज भेजा है, चार लाइन भी भेजे हैं, कोठी कुशाल मार्केट से। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह, हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अश्विन जी मुझे हिंदी सिखाने की कोशिश, बहुत दिनों से कर रहे हैं, जो मैं सीखते आ रही हूँ धीरे धीरे। अगर कोई गलत वर्ड बोल दिया तो माफ़ी चाहती हूँ। वेल, राइट नाउ इट्स 1:52 एंड स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया है जश्न हैदराबाद का। लेट मी से टाटा बाय एंड आई एम गोना साइन ऑफ। लेकिन एक आखिरी बात, प्लीज़ बी काइंड टू एनिमल्स। उनका कोई नहीं है, कम्युनिटी एनिमल्स का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। उनके लिए एक बोल पानी बाहर रख दीजिएगा अपने, बालकनी में या डोर के बाहर। एंड स्टे काइंड टू एवरी काइंड। दिस इज जयश्री साइनिंग ऑफ।

वेल दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आरजे सवेरा रेड्डी से रिमझिम हैदराबाद। 9:30 पर आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: Rainbow 101.9
1: ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM रेनबो पर। इस वक्त स्टूडियोज की घड़ी में रात के 9:30 और 40 सेकंड्स हो रहे हैं। अब वक्त हुआ जाता है और तो प्रोग्राम नए रंग का सामाइन की खिदमत में सनालमास बावजीर का पुरखलूस आदाब पेश है और तो प्रोग्राम नए रंग।

आगाज पर सुनिएगा हरफे ताबिंदा, इसके बाद आप सुन सकते हैं भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत। हिंदी फिल्मी गीतों के सफर में बातें होंगी फूलों की दास्तान, नित नए रंगों के फूल।

नए रंग बज्म के इख्तिताम पर आप सुनेंगे पयामे शब, जिसको पेश करेंगे सैयद नदीम अख्तर जेदी। और रात 11 बजे उर्दू प्रोग्राम नए रंग का इख्तिताम होगा।

0: तो आइए दोस्तों, बज्म का आगाज करते हैं हरफे ताबिंदा से।
1: हमारी जिंदगियों में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है हौसला। हौसला क्या है? क्या यह सिर्फ बहादुरी का नाम है? नहीं, हौसला सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि यह एक अंदरूनी क़ुव्वत है, एक ऐसी आग है जो हमें नामुमकिन को मुमकिन बनाने की तरगीब देती है। ये वो जज्बा है जो हमें नाकामी के बाद दोबारा उठने, ठोकर खाकर संभलने और मुश्किल हालात में साबित कदम रहने की हिम्मत देता है। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, जब मायूसी के बादल हमें घेर लेते हैं, लेकिन यही वो वक्त होता है

0: जब हमें अपने अंदर के हौसले को जगाना होता है। तारीख गवाह है कि दुनिया के बड़े बड़े रहनुमाओं, साइंसदानों और कामयाब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। उन्हें बार बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार कोशिश की, लेकिन वो हर नाकामी को एक नया सबक समझते रहे। उनका मशहूर कौल है कि मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके दरियाफ्त किए जो काम नहीं करते। ये हौसले की ही आला मिसाल है, हौसला और मकसद का तायुन। हौसला हमें खतरात मोल लेने की तरगीब देता है। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमें हौसले की ज़रूरत होती है। नई महारतें सीखना, नए ख्यालात पेश करना या किसी भी मुश्किल काम में पहल करना, ये सब हौसले के बगैर मुमकिन नहीं। याद रखें, हर बड़ा ख्वाब हौसले की पहली सीढ़ी चढ़ने से ही पूरा होता है। चाहे वो किसी नए कारोबार का आगाज हो, कोई मुश्किल इम्तिहान पास करना हो या अपने माशरे में कोई मुस्बित तब्दीली लाना हो, ये सब हौसले की ही बुनियाद पर खड़े हैं। साबित कदमी और खुद एतमादी। हौसला हमें साबित कदमी सिखाता है। जब हम किसी मकसद के हुसूल के लिए निकलते हैं तो रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। कभी लोग हमारी हौसला शिकनी करते हैं, कभी हालात साजगार नहीं होते और कभी खुद हमें अपने इरादों पर शक होने लगता है। ऐसे में हौसला ही हमें अपने मकसद से भटकने नहीं देता और हमें मुस्तकिल मिजाजी से कोशिश करते रहने पर आमदा करता है। ये हमें खुद एतमादी देता है कि हम उन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और इन पर काबू पा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, वो खिलाड़ी जो मैच के आखिरी लम्हात तक अपना हौसला नहीं हारते और जीत के लिए आखिरी दम तक कोशिश करते हैं, वो फतेहयाब होते हैं। हौसला और मुस्बित सोच। हौसला हमारी शख्सियत को निखारता है। एक हौसलामंद शख्स न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बनता है। उसकी मुस्बित सोच और उसकी अज़्म की पुख्तगी दूसरों को भी आगे बढ़ने की तरगीब देती है। जब आपके अंदर हौसला होता है तो आप मुश्किलात को मसाइल नहीं बल्कि मौके समझते हैं, जब आपको मजीद मजबूत बनाते हैं। ये एक वायरल असर की तरह है। जब एक शख्स हौसला दिखाता है तो उसके आसपास के लोग भी मुतासर होते हैं और अपने अंदर की सलाहियतों को पहचानते हैं। हौसले की परवरिश कैसे की जाती है? सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने अंदर इस हौसले की शमा को कैसे रोशन रखें और इसे कैसे परवान चढ़ाएं। अपने छोटे छोटे मकासद तय करें। जब आप छोटे अहदाफ हासिल करते हैं तो आपका हौसला बढ़ता है और आप बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार होते हैं। नाकामियों से सीखें। हर नाकामी को एक सीखने का मौका समझें, ना कि मायूसी का सबब। अपनी गलतियों से सबक हासिल करें और आगे बढ़ें। मुस्बित लोगों से ताल्लुक़ रखें। ऐसे अफराद के साथ वक्त गुजारें जो आपको तरगीब दें और आपके हौसले को बुलंद करें। अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें। अपनी ताकतों को पहचानें और उन पर एतमाद करें। अपने माजी की कामयाबियों को याद करें। जब कभी हौसला टूटने लगे तो उन लम्हात को याद करें जब आपने किसी मुश्किल को उबूर किया था। तो दोस्तों, आइए आज हम सब ये अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी हौसला नहीं हारेंगे। चाहे जितनी भी मुश्किलात आएँ, हम उनका सामना करेंगे, उनसे सीखेंगे और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। याद रखें, कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो हौसला रखते हैं, जो गिरकर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने दिलों में हौसले की शमा रोशन रखें, क्योंकि यही शमा हमें तारीकी से रोशनी की तरफ ले जाती है और हमें मंजिल तक पहुंचाती है।
1: नूरुद्दीन की आवाज में अभी आपने सुना हरफे ताबिंदा। आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। हाँ जी बिल्कुल, हम आपसे ढेरों सारी बातें करेंगे और आगे हम बात करेंगे नित नए रंगों के फूल, फूलों की दास्तान, और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का भी हम ध्यान रखेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले सुनते हैं फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से लिया गया बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत। रानी मलिक के बोलों को संगीत में पिरोया है अनु मलिक ने और आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं नित नए रंगों से सजा उर्दू प्रोग्राम नए रंग मेरे संग, जिसमें हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भुलाई नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत। और इस गीतों के सफर में होंगी बातें अनेक। सुरीले गीतों का सफर शुरू करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के उस पार बातें होंगी फूलों की।

हाँ जी बिल्कुल, अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं मन चले नटखट गीत और ढेरों सारी बातें लेकर, है ना। आज का विषय फूलों की दास्तान, इसी के अंतर्गत बातें होगी। हाँ भाई, आज तो हमारा स्टूडियो भी महक उठा है बातें जो हो रही है फूलों की, है ना। कहते हैं कि जब कुदरत ने जमीन को सजाया तो सबसे पहले रंग बिखेरे और वो रंग बन गए फूल, वो जो कांटों में रहकर भी शिकायत नहीं करते, वो जो कांटों में रहकर भी शिकायत नहीं करते, वो जो खामोश रहकर भी सबका दिल जीत लेते हैं। कोई कहता है फूल मोहब्बत है, तो कोई कहता है फूल दुआ है, लेकिन मैं कहती हूँ फूल तो कुदरत की रहमत की महक है। और आपका क्या कहना है वो हमें ज़रूर बताइएगा।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत। और साथ ही आज हम बात कर रहे हैं फूलों की दास्तान। इस उनवान के तहत आज हम अपनी इन्हीं रहमतों की बात करेंगे। गुलाब जो कि इश्क का पैगाम है, मोगरा जो कि रात का सुकून है, और चमेली जो कि सुबह की ताजगी है। तो आइए बंद आंखों से महसूस कीजिए, क्योंकि आज बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महकने के लिए हो रही है।

तो दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म सूरज से लिया गया ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत। और हम आपको बता दें कि ये फिल्म रिलीज़ हुई थी सन 1966 में, और इस फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखलाते नज़र आए राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला। हसरत जयपुरी के बोलों को संगीत में पिरोया है शंकर जयकिशन ने और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। जी हाँ दोस्तों, फूल सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि ये एक एहसास है, ये एक दुआ है और ये एक मोहब्बत है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाब की। हाँ जी, गुलाब को फूलों का बादशाह कहा जाता है। इसकी नर्म पंखड़ियाँ, इसका गहरा गुलाबी रंग और इसकी ठंडी खुशबू दिल को फौरन सुकून देती है। साइंस कहती है गुलाब में 300 से ज़्यादा खुशबू वाले अज्जा मौजूद होते हैं। इसका अर्क गुलकंद और इतर दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और द प्रोग्राम नए रंग आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भुलाई नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत और बातें हो रही हैं फूलों की दास्तान पर। भाई, स्टूडियो की घड़ी हमारी ओर इशारा कर रही है कि वक्त हो चला है एक ब्रेक का।

हाँ जी बिल्कुल, अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं मन चले नटखट गीत लेकर। गुलाब की पैदावार का बेहतरीन मौसम सर्दी और बहार है, फरवरी से अप्रैल तक। इस वक्त गुलाब सबसे ज्यादा खुशबूदार होता है। और हाँ, ये भी बिल्कुल सच है कि गुलाब हमें सब्र सिखाता है, कांटों के साथ रहकर भी महकता है।

0: पल में कहाँ से कहाँ ले गया डायरी में रखा एक सूखा गुलाब। हाँ जी बिल्कुल, फूल एक ऐसा अनमोल तोहफा है जो कि ना सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि इसके बहुत से फवायद भी हैं। फूल जो कि अक्सर लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वहाँ ये बहुत से लोगों की मोहब्बत का जरिया भी बनता है। और ये खास तौर पर लोगों के नज़दीक मोहब्बत करने वालों के लिए ही बना है। और यकीनन इससे इत्तेफाक आप भी करते ही होंगे कि इसमें एक खास गुलाब जो कि लोगों को बहुत पसंद होता है और इसे बहुत से लोग मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को देते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत गुलाब होता है। ये गुलाब बहुत ही प्यारा और बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। ये हम सुर्ख गुलाब की बात कर रहे हैं। आपने इसका अनुमान लगा ही लिया होगा कि हम रेड रोज़ की बात कर रहे हैं और बहुत से लोग इसे पसंद भी करते हैं। और इसकी खासियत ये भी है कि इसका अर्क निकाल कर आँखों में भी डाला जाता है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। और प्रेमी अपनी डायरी में इसको महफूज भी रखते हैं। ये अहम बात है कि प्रेमी अपनी डायरी में इसको महफूज भी रखते हैं, बीते हुए लम्हों की याद बनाकर।
1: अभी अलविदा मत कहो।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और द प्रोग्राम नए रंग आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। हाँ जी बिल्कुल, बातें हो रही है रंग बिरंगे फूलों की और इनकी दास्तान की। जी हाँ, फूल ही फूल याद आते हैं, फूल ही फूल याद आते हैं आप जब जब भी मुस्कुराते हैं। जब बात हो ही रही है फूलों की तो हम मोगरा को कैसे भूल सकते हैं, है ना? हाँ जी बिल्कुल, मोगरा छोटे सफ़ेद फूलों का एक गुच्छा होता है। दिन में खामोश और जैसे ही रात होती है इसकी खुशबू सारे घर को महका देती है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि मोगरा घर में बरकत और सुकून लाता है। देखे ना कि आज हमारा स्टूडियो भी महक उठा है इन गुलाबी गुलाबी बातों से।

मोगरा का मौसम गर्मी और बरसात है। मई से दिसंबर तक यानि इसी मौसम में ये सबसे ज़्यादा फूल देता है और महिलाएं शादी में गजरे और विनी इसी से बनाती हैं और घरेलू काज में मोगरा लाजमी होता है। हाँ जी बिल्कुल, मोगरा हमें सिखाता है कि असल रोशनी जो है ना अंधेरे में ही नज़र आती है। और मुझे याद आता है वो उम्दा सा शेर, दो दिन की जिंदगी है इसे दो ही उसूलों पर गुजार दो, दो दिन की जिंदगी है इसे दो ही उसूलों पर गुजार दो, मिलो तो फूल बनकर बिखरो तो खुशबू बनकर।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत। और हिंदी फिल्मी गीतों के सफर में आज बातें हो रही है नित नए फूलों की, नित नए रंगों के फूलों की। जी हाँ दोस्तों, फूल चमेली सफ़ेद रंग और पांच पंखुड़ियों वाला होता है और ये फूल पाकिजगी की अलामत है। चमेली की खुशबू तेज भी है और मीठी भी। गर्मी में इसकी ठंडी तासीर सर के दर्द और बेचैनी के लिए बेहतरीन होती है। चमेली का इतर पूरी दुनिया में मशहूर है। चमेली अप्रैल से अगस्त तक यानी पूरी गर्मी में

खिलती है। इसे सुबह सवेरे तोड़ा जाता है ताकि खुशबू कायम रहे। और कहा जाता है ना कि घर की जीनत के लिए चमेली सबकी पसंद होती है।

जी हाँ दोस्तों, मौसम गर्मा में मोतियाबहार का इस्तेमाल ख़ास तौर से किया जाता है। मोतियाबहार फूल की ये खसूसियत होती है कि ये ठंड बख्श सिफत का हामिल होता है, नायाब खुशबों का मालिक होता है। मोतियाबहार ताजगी फराहम करता है। यकीनन

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और तो प्रोग्राम नए रंग आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बाबाजी के संग। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त स्टूडियोज की घड़ी में रात के 10:45:50 हो रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं फूलों के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि फूल सिर्फ इजहार ही नहीं करते बल्कि ये कह भी उठते हैं। ये हम नहीं बल्कि एक भाई की फरियाद है। भाई का प्यार है अपनी बहन के लिए, वो किस तरह, लीजिए आप ही सुनिए ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ रंगों के फूलों की। हम आपको फूलों की अकसाम बताते चलें, जैसे कि होता है मोतिया, चमेली, गेंदा, गुल, लाला, सदाबहार, नरगिस, चंपा, सूरजमुखी और कमल।

तो दोस्तों, सर्दी में गुलाब, बरसात में मोगरा और गर्मी में चमेली बेहद दिलकश होते हैं। क्या कभी आपने ध्यान दिया कि फूल हमें क्या सिखाते हैं? जी बिल्कुल, फूल थोड़ी देर के लिए आते हैं लेकिन अपनी खुशबू हमेशा छोड़ जाते हैं, ठीक इंसानों की तरह। और हम यही आशा करते हैं कि आपकी जिंदगी भी फूलों की तरह महकती रहे।

0: तो दोस्तों, सुरीले गीतों का सफर होता है यहीं पर अब खत्म। आइए अब सुनते हैं पयामे शब। तहरीर और पेशकश होगी सैयद नदीम अख्तर जिदी की।
1: मेरे खुदा मुझे इतना तू मोतबर कर दे, मैं जिस मकाम में रहता हूँ उसको घर कर दे। इंसान सारी जिंदगी एक मकान को खूबसूरत बनाने में दौलत, आसाइश और सहूलतें जमा करता रहता है, लेकिन मकान को घर बनाने के लिए सिर्फ दीवारें नहीं, दिलों में मोहब्बत चाहिए। घर वो जगह है जहां इंसान को इज्जत मिले, उसकी बात सुनी जाए, दुख में सहारा दिया जाए और खुशी में शरीक हुआ जाए। बड़े से बड़ा महल भी बेमाना है अगर इसमें सुकून, मोहब्बत और एहतराम ना हो। इसीलिए हमें अपने घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि मोहब्बत, बर्दाश्त, एतमाद और खुलूस का मरकज बनाना चाहिए। वालिदैन का एहतराम, बच्चों से शफ़क़त, मियाँ बीवी में एतमाद और अहले खाना के साथ हुस्न सलूक ही घर की असल दौलत है। मोतबर बनने की ख्वाहिश सिर्फ लोगों की नज़रों में इज्जत हासिल करने के लिए ना हो, बल्कि अपने किरदार से इस काबिल बने कि हमारी मौजूदगी से घर में सुकून और माश

0: शरीर में भलाई पैदा हो। मकान ईंटों से बनता है मगर घर मोहब्बत से बनता है, और इंसान दौलत से नहीं अपने किरदार से मोतबर होता है।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम नए रंग इख्तिताम को पहुंचता है। इस वादे के साथ दोबारा जल्द होगी आपसे मुलाकात इन्हीं मीटर्स पर। तब तक के लिए आपकी रेडियो दोस्त
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
3: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बलों और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थांकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तंत्र श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य महत्वपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने वाला दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो AI से तैयार किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और तैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra. Today we'll also be taking calls from you on market-related queries, but do remember that we do not address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar. Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn poochne ke liye aap dial kijiye 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें। श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं बाजार विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
0: वार्म वेलकम सिद्धार्थ।
2: गुड इवनिंग, नमस्ते प्राची।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए जानते हैं सुर्खियां।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन फॉर द सेकंड consecutive week, Sensex and Nifty slips around 0.5%. US imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with US fail. Canada says it will retaliate. And global crude oil prices extend their rising streak this week.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी लगभग आधा प्रतिशत फिसले। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडाई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता के विफल होने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। और इस सप्ताह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े।
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आइए श्रोताओं, अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सप्ताह के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक लगातार दूसरे सप्ताह फिसले, बढ़ते वैश्विक तनाव, कच्चे तेल के बढ़ते दाम और वैश्विक बॉन्ड बाजारों में अनिश्चितता के कारण ये गिरावट दर्ज की गई। सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 468 अंक यानी 0.6% फिसलकर 77,541 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगभग आधा प्रतिशत लुढ़ककर 24,252 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार सूचकांकों की अगर बात करें तो मिड कैप 100 में मामूली गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में सप्ताह के दौरान 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। क्षेत्रीय स्तर पर निफ्टी आईटी और एफएमसीजी में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.3% की गिरावट आई। इसके विपरीत निफ्टी मेटल और रेल्टी में लगभग 2% की वृद्धि हुई। निफ्टी मीडिया में 1.4% की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस सप्ताह 28 पैसे कमजोर होकर अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.71 पर स्थिर हुआ।
0: So Siddharth, the benchmark domestic equity indices for the second consecutive week declined due to the reasons mentioned by Prachi also, renewed global tensions, elevated crude oil prices and uncertainty in global bond markets. Now that we're getting into the third week, these will continue to persist. And we will continue to have the weighed down investor sentiment going forward.
2: See, Rajesh, it, looks,
0: it seems so.
2: Yeah, so as you rightly said, it seems so. Yes, because we don't see any dilution as far as the global tension is concerned.

0: Almost doubled. We all around 40. Plus, we are also spreading our energy base to a lot of renewables. So, I think all that, I do not see too much of. There will be some impact. Obviously, rains are also having an impact, and there will be sentiment also getting negative on certain. But we have good buffers, so I do not see immediately any concern.
1: श्रोताओं और भी खबरों की विवेचना करें कि हमारे समक्ष सिद्धार्थ सिंह मौजूद हैं और अगर आपके भी दिल में कोई सवाल हो तो आप जरूर हमें कॉल करें कॉल मिलाएं और ये नंबर्स हैं 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 आगे और बात करेंगे आपसे सिद्धार्थ मगर उससे पहले आइए जोड़ते हैं अपने पहले कॉलर को दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे थे कृपा शंकर जी मुझे उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे मगर उससे पहले हम एक सवाल मेरे मन में है सिद्धार्थ की आपने जैसा कि बताया कि रेजिलियंस की जो बात है मुझे लगता है कि एक मच्योर खिलाड़ी की जो पहचान है वो ये है कि वो पिच पर कैसे टिके रहते हैं ये नहीं कि वो कितने छक्के मार रहे हैं और एकदम जो है वो अलंकृत कर दिया है पूरे माहौल को बहरहाल हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर का डेटा आया है इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेटा आया है अगर हम Q1 के रिजल्ट्स के लिहाज से देखें तो भी हमने अच्छा एक प्रदर्शन जो है हमारे इकोनॉमी का तो हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो या यूं कहें कि हमारा जो बही खाता है उसमें अगर लाल लगे हैं तो हरे के भी निशान हैं
0: नहीं बिल्कुल ठीक कहा प्राची आपने जैसे जो आपने Q1 की जो हम अप्रैल से जून की अगर कॉर्पोरेट जगत की हम अर्निंग्स या जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी मतलब बिल्कुल भी बुरे नहीं थे और अगर आप और ये ऐसे समय पे अप्रैल जून वो समय है जब हमने पूरा पूरा जो अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई वो शुरू हो गई थी तकरीबन फरवरी के लास्ट में तो वो अप्रैल जून पहला क्वार्टर पूरा पूरा जो है वो उसी में निकला है जब दोनों देशों के बीच में और पूरी दुनिया में जो है
1: इतनी उथल पुथल
0: और अनसर्टेनिटी ऑब्वियसली क्योंकि एनर्जी जो क्रूड ऑयल है वो एक बेस वो है रॉ मटेरियल है फॉर लॉट ऑफ थिंग्स मतलब चाहे वो केमिकल्स हो चाहे तो किसी भी तरह का तो वो अगर इफेक्ट होता और वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम 90% उसे आयात करते हैं और उसमें से भी तकरीबन काफी बड़ा आयात हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से ही आता था तो आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए और उसके साथ साथ हमको लगता है जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो अभी भी बनी हुई है जो इन्फ्लेशन के लेवल्स हैं या जो महंगाई दर है वो अभी भी जब मैं कोर इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा कोर इन्फ्लेशन जो ट्रैक करता है तो उसमें अभी कहीं ना कहीं उस तरह की चिंता या जो सेकेंड राउंड इफेक्ट हम कहें या कंपनीज पास ऑन कर रही हूँ प्राइजेस ऐसा अभी दिख नहीं रहा है
1: जी दिल्ली से हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं कृपा शंकर जी महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन कृपया अपना सवाल पूछिए
2: हेलो नमस्कार जी
1: नमस्कार
2: मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से कि जैसे सर तो विशेषज्ञ है तो ये लोग अपने ऑफिस इनके कहाँ है जहाँ से हम जाके सवाल ले सके और सवाल मेरा ये है कि जैसे कि मैं टोटल मेरा अमाउंट जो है FD में लगा हुआ है लगभग 40 लाख ये अक्टूबर में मैच्योर हो जाएगी सितंबर लास्ट में तो ये बताइए कुछ गोल्ड भी है तो ये अब मैं कैसे कहाँ मैं इसको इन्वेस्ट करूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में नयापन है तो
0: कृपा शंकर जी आपकी मैं एज जान सकता हूँ आपकी उम्र
2: मेरी एज तो लगभग सीनियर हो गई है बच्चों के लिए बच्चे जो मेरे 26-28 के हैं तो उनके लिए आगे क्या रहेगा
0: नहीं कृपा शंकर जी आपका सवाल बहुत अच्छा है देखिए मैं तो एक प्रोफेशनल हूँ मेरा कोई इस तरह का ऑफिस तो नहीं है मेरा बेसिकली जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है और मैं जो अर्थव्यवस्था करीब 25-26 साल से ट्रैक करता हूँ इसलिए मेरी जो भी इस पे नॉलेज है वो मेरे काम कर करके जो भी मैंने सीखा है तो पहला तो सवाल आपका उसका जवाब ये है
1: और मार्केट मंत्र में आप आते हैं हाँ, और सभी सवालों के जवाब
0: जी तो वो है दूसरा जहां तक आपने जो सवाल पूछा कि आपको आपके लिए तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपने खुद ही कह दिया कि आप सीनियर सिटीजन है लेकिन आप अपने बच्चों के हिसाब से पूछ रहे हैं तो बिल्कुल उनको अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए बिल्कुल करना चाहिए और मुझे लगता है 25-26 के हो गए तो अब तक शुरू कर देना चाहिए था मतलब मुझे लगता है एक राइट एज है जैसे ही आप मेच्योर होते हैं 18-19 साल में ही म्यूचुअल फंड में आ जाएं अगर उन्होंने PPF अकाउंट अकाउंट आपने नहीं खोला है तो आप वो खोल सकते हैं, क्योंकि वो आज भी सबसे बढ़िया निवेश है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो पैसा जब तक निवेशित है तब तक टैक्स फ्री है और आपको जब मिलता है तब भी टैक्स फ्री रहता है। तो पीपीएफ खोलें, म्यूचुअल फंड खोलें, और मार्केट बेस्ड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटीज़, मतलब जब

0: स्टॉक मार्केट जो आधारित म्यूचुअल फंड्स हों उन पे ज़्यादा लगाएं। आपने एफडी कर रखी है तो आप अपने ज़रूरतों के हिसाब से अपना पैसे को सुरक्षित एफडी में ही रखें। आपको इस उम्र के इस पड़ाव पे तो मार्केट्स में लगाने की सलाह नहीं,
1: से बेटर इनको अर्न करना है।
0: नहीं, इन्फ्लेशन से भी राजेश, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनको इस वक्त पे डेट मार्केट की भी सलाह इसलिए नहीं दूंगा।

0: सर, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो वन थिंग, दैट इज मेरे दादाजी ने कुछ शेयर छोड़े थे मेरे नाम पे, तो अभी उस शेयर्स को क्लेम करने के लिए पहले तक के सक्सेशन सर्टिफिकेट वो लगता था, तो मैंने बीच में सुना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वो सक्सेशन सर्टिफिकेट उसको हटा दिया क्योंकि काफी लोग वो क्लेम नहीं कर पा रहे थे, तो आज भी क्या वो सक्सेशन सर्टिफिकेट वो लागू है?
1: नहीं अरिजीत जी, देखिए सवाल आपने जो पूछा है ये कई बार बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन जो आपने बात बोली कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जो वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूफ करता है कि आप अपने फादर के या मदर के जो भी आप जिनके बिहाफ पे जो आपने बोला आपके फादर ने जो कुछ शेयर्स खरीदे थे आप उनको क्लेम करना चाहते हैं, तो अगर आप वो तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, उन्होंने कोई हाँ ये जरूर किया होगा कि उसको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई किया होगा कि किस तरह से आप इस्टेब्लिश करें कि आप सक्सेसर हैं अपने पिताजी के, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट तो केवल ये इस्टेब्लिश करता है कि उनके कितने जो है सक्सेसर्स हैं, वो शायद उनकी आपकी मदर भी हो सकती हैं, उनकी वाइफ भी हो सकती हैं, आपके कोई और भाई बहन है फैमिली में, लेकिन हो सकता है आपके फादर ने अगर कोई कोई विल छोड़ी हो या कोई अपनी उन्होंने इच्छा कहीं रिटर्न में व्यक्त की हो कि कैसे किसको ये शेयर्स मिलेंगे, लेकिन ये तो जरूर तय है कि आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आप ही उनके राइटफुल सक्सेसर हैं और आप ही को ये क्यों आप ही को दिया जाए।
2: Subhash from Faridabad joins us now. Subhash, a warm welcome.
3: Good evening, sir.
2: Good evening.
3: Sir, मुझे लास्ट एक डेढ़ साल से नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो अभी सर 2026 में भी हमें कंटिन्यू कर रहा हूँ इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ऐसा ही चल रहा है, तो क्या मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए सर या कुछ डिसकंटिन्यू कर दें? दो तीन म्यूचुअल फंड है जिसमें मेरा ऐसा ही चल रहा है।
1: नहीं सुभाष जी, एक तो ये है कि कल का जो मार्केट मंत्र प्रोग्राम होगा उसमें म्यूचुअल फंड के ऊपर स्पेशली डिस्कशन केवल म्यूचुअल फंड पे होता है, आधारित होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके सवाल का फिर भी इतना जवाब जरूर दूंगा कि अगर निगेटिव रिटर्न आ रहा है तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड का यही एक फंडामेंटल ये है कि लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SIP के थ्रू कर रहे हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो बिल्कुल उसको करते रहें, और आपको जरूर जब आप एक थोड़ी अवधि के बाद आप देखेंगे 2-3 साल बाद कि आपको जो ये रिटर्न्स हैं, क्योंकि इस समय जब आप रिटर्न जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट्स अगर बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं उसी पैसे में, और वो जब मार्केट चढ़ेगी तो वो यूनिट्स की का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा, तो आपको फायदा जरूर होगा, तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहें और इन्वेस्ट करते रहें।
2: Moving on, the United States has imposed 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products. The tariffs came into effect early today. Canada immediately said it would retaliate after failure of last-minute talks to ease tensions between the two historic allies. The new U.S. tariffs will affect about 5% of Canada's annual exports to the United States. The products include hockey sticks and tongue depressors. Canadian Prime Minister Mark Carney said Canada would match the tariffs dollar for dollar. Mr. Carney blamed Washington for the failure of the talks and said the last-minute changes in the U.S. proposal were unfair and uneconomic. The last line is extremely important, that last-minute changes were very unfair and uneconomic. How safe would our deal be with the United States? Last minute changes?
1: Rajesh, I think we've had a fairly very detailed discussions, and I think now behind the curtains, the last minute threadbare details are being minute details are being worked out.
2: I'm sure Canada also had the last
1: but with Canada, if you go back, Rajesh, I think there has been some problem with Canada, and last time also when US imposed tariffs on them, Canada retaliated with the
2: so we
1: same.
2: Are quite hopeful in our case.
1: Yeah, in our case obviously we've come down to 10% now, so, and I don't see, and we are very large partners still, we continue to be one of the biggest trading partners. US continues to be our biggest trading partner, and biggest our exports to US haven't come down, so we continue to export to US, we are the largest exporters to US, so I don't see that risk with Mr. Trump. But though yes, he's unpredictable, notwithstanding having said all that, yes, still the unpredictability factor with Mr. Trump always exists, and the example before is before
2: right
1: us.
2: Before us.
4: Yes. Siddharth, aur bhi khabrein hain hamare.

0: पास, जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, मगर उससे पहले आइए भोपाल से जुड़े शंकर को। शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: नमस्ते मार्केट मंत्री सरदार जी को नमस्ते। ये जीडीपी रेशो यूएस का डेट टू जीडीपी करीब 123% 126% के आसपास है, अमेरिका जापान का वो ऑलमोस्ट डबल है, जिसकी वजह से वो काफी जबरदस्त रिसेशन में या स्टेग्नेशन में गए थे। क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी स्टेग्नेशन में जाने की संभावना है, उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक और इसी से संबंधित सवाल है। यूएस में इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ेंगे नहीं, घटने की उम्मीद है, ऐसा है तो हमारे यहाँ उनकी अगर यील्ड कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो पैसा फ्लो इंडिया में बढ़ेगा क्या? सो दैट वी एज अ रिटेल इन्वेस्टर कैन रिमेन इन्वेस्टेड, एंड बिकॉज अवर सेविंग्स इज ऑल इन दैट, अवर पेंशन, अवर फ्यूचर इज लिंक्ड विद अवर म्यूचुअल फंड। सो हाउ इज अवर फ्यूचर इन म्यूचुअल फंड फॉर इन इंडियन इक्विटी मार्केट? थैंक यू।
2: नहीं शंकर जी, आपने काफ़ी अहम चीज़ें और बहुत ज़रूरी चीज़ें उठाई। एक तो मुझे नहीं लगता कि हमें चिंता करनी चाहिए यूएस के डेट को लेके, क्योंकि अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर वहाँ महंगाई बढ़ती है तो वहाँ अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो हमारे लिए ख़राब है, और अगर वहाँ इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं, जैसा आपने बोला जो उन्होंने अभी बायबैक प्रोग्राम अनाउंस किया, तो उसके बाद जो है कुछ यील्ड्स वहाँ घटी भी थी, लेकिन अभी वो कितना सस्टेन करती हैं वो देखने वाली बात है। हाँ, अगर अमेरिकन इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन आता है तो बिल्कुल हमारे ऊपर असर होगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो है मार्केट है अमेरिका, साथ साथ हमारी आईटी कंपनीज बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका में जो है काम करती हैं, तो उन पे ज़रूर उसका इफेक्ट होगा। तो और जहाँ तक आपका सवाल कि अगर वहाँ यील्ड कम होती है, तो बिल्कुल ठीक बात आपने कहा कि हो सकता है वहाँ से इन्वेस्टर ऑलरेडी आ रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं डेट मार्केट में तो बहुत बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। और देखिए शंकर जी, एक बात और आपको मैं बोलूँगा, अमेरिका में क्या हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये आप हमेशा एक भरोसा मान के चलिए कि आपकी अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की आज भी सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तकरीबन 7% इस साल भी हमारा एस्टिमेट है, 6.7 RBI ने बोला है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी अपने निवेश को लेके कोई चिंता करनी चाहिए। हमारे फंडामेंटल्स हों चाहे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब सॉलिड हैं और कोई भी चिंता की बात नहीं। एक्सपोर्ट्स हों, आप देखिए इस चुनौतीपूर्ण टाइम में भी हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। सरकार ने जो है, जब ये जो अनसर्टिनिटी दुनिया में आई है, और ये अनसर्टिनिटी तकरीबन 2 साल से, टैरिफ हो चाहे चीन को लेके हो, तो हमने FTAs वगैरह भी किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, तो बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हम कर रहे हैं ताकि हमारी इकोनॉमी, हमारे एक्सपोर्टर्स इन सब चीजों से बचे रहे।
0: दिल्ली से हमारे साथ योगेश जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। अभिनंदन करते हम जरूर अगर योगेश जी के साथ संपर्क जो है वो बरकरार रहता, मगर शायद अभी हमारा संपर्क टूट गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बताया कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा में 21 अगस्त 2026 तक 72 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्रवाह हुआ है। कुल प्रवाह में से विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा का हिस्सा सबसे अधिक यानी 65.4 अरब अमरीकी डॉलर था। वहीं विदेशी मुद्रा उधार से लगभग 5 अरब अमरीकी डॉलर और बाहरी वाणिज्यिक उधार से लगभग 2.5 अरब अमरीकी डॉलर का योगदान रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष 8 जून को अनिवासी जमा, बाह्य वाणिज्यिक उधार और विदेशी मुद्रा उधार में आने वाले विदेशी मुद्रा प्रवाह को कवर करने वाली विशेष USD INR विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए लाई गई यह स्वैप सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इस सुविधा को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया के कारण इसे एक महीने पहले ही बंद कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में अपेक्षित मात्रा में विदेशी मुद्रा का प्रवाह हुआ। यह योजना अब विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा के लिए 31 अगस्त 2026 तक खुली है, जबकि बाह्य वाणिज्यिक उधार और विदेशी मुद्रा उधार के लिए यह सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी। सिद्धार्थ, आरबीआई का लक्ष्य 80 से 90 बिलियन यूएस डॉलर एकत्र करने का था। इस पर बहुत उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। रुपए की स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये कितना, मैं अगर आपसे संक्षिप्त में पूछना चाहूं तो कितना योगदान इसने दिया है?
2: नहीं प्राची, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप अभी देखेंगे, आज 21 अगस्त तक की ये जो फिगर्स जो दी हैं उसी में 72 बिलियन डॉलर आ चुका है, और 80-90 का टारगेट था, लेकिन अब मुझे लगता है जो RBI ने इसको प्री मेच्योरली क्लोज किया है एक महीना पहले, मुझे लगता है जो उनका एम था वो पूरा हो गया है। अब रुपए भी स्थिर, हमारा जो मुद्रा भंडार है वो भी, उसमें भी आप देखेंगे वो 700 बिलियन के ऊपर है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको लगा कि

0: इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
1: Global crude oil prices rose to near four-week highs as the 60-day U.S.-Iran memorandum of understanding expired this week without a permanent peace agreement. The Strait of Hormuz remains effectively closed, with Iran insisting that it will remain shut until Washington meets Tehran's demands, while the U.S. naval blockade in the region remains in place. Meanwhile, U.S. President Donald Trump has threatened tougher economic sanctions on Iran and its trading partners, raising concerns over tighter oil supplies in the coming weeks. During the week at the International Exchange, Brent crude October futures surged 6.6% to settle at $94.39 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures soared 6.9% to end at $87.06 per barrel.
2: दिल्ली से हमारे साथ योगेश जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी, जैसे हम मार्केट में वैल्यूएशन देखते हैं तो जो लार्ज कैप में बीएसई इंडेक्स के हिसाब से जो वैल्यूएशन होती है, उसका प्राइस अर्निंग रेशियो 20-22 के आसपास रहता है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 32-33 तक रहता है। तो ये नॉर्मल है कि इनका प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा ही रहता है, या फिर अभी ये ओवर वैल्यूएट जोन में ही इनको दिखाता है?
0: नहीं, देखिए, दोनों बात आपकी अपनी जगह सही है, लेकिन जब भी स्मॉल कैप और मिड कैप का आप देखेंगे, थोड़ा प्राइस अर्निंग रेशियो हमेशा ज़्यादा रहता है इन वनस्पत जो बीएससी के आप इंडेक्स को देखेंगे, तो इसको लेके मुझे नहीं लगता कोई बहुत चिंता करनी चाहिए आपको। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियों में जब भी आप निवेश करें, थोड़ा उनको फंडामेंटली स्टडी कर लें, उनके ऑर्डर बुक, उनका प्राइस अर्निंग रेशियो वगैरह ध्यान से देखें, उनकी जो मैनेजमेंट है, तो मुझे लगता है बस उस पर ज़्यादा ध्यान दें, बाकी कोई मुझे नहीं लगता चिंता है।
1: Major U.S. stock market indices rose yesterday but ended the week in the red. The Dow Jones Industrial Average advanced 1% and the S&P 500 and Nasdaq Composite each gained 0.4%. However, for the week, the Nasdaq shed 2% and the S&P 500 slipped 1.4% and the Dow fell 0.9%.
2: सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, आपने सभी के जवाब दिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्राची, राजेश, आप दोनों को भी धन्यवाद।
1: थैंक यू सिद्धार्थ फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic indices declined for the second consecutive week. Sensex and Nifty slips around 0.5%. U.S. imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with U.S. fail. Canada says it will retaliate. And global crude oil prices extend their rising streak this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और 11 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। गीत मेरे मनमीत ये वो जगह है, ये वो प्रोग्राम है जहां पर सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर होते हैं। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा में एक नई रूह पैदा हुई थी,

एक नया जश्न का माहौल था, एक नए तरीके की फिल्में बन रही थी। ये वो दौर था जिसको आज भी हम उसी तरीके से याद करते हैं, और ये दौर 1945 से लेकर तकरीबन 1965 के आसपास का माना जाता है। और इस दौर में जो फिल्में बनी वो मील का पत्थर साबित हुई। उन्हीं फिल्मों में से हम कुछ चुनिंदा नगमों के साथ हाजिर हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और इस महफिल में सबसे पहला नगमा विजय भट्ट साहब के निर्देशन में बनी फिल्म बैजो बावरा से। यह फिल्म आई थी 1952 में। इस फिल्म के गीतों को लिखा था बेहद खूबसूरत गीतकार शकील बदायूं ने, और संगीत था नौशाद साहब का। इस फिल्म के ज्यादातर नगमे शास्त्रीय संगीत पर आधारित थे, और ये जो नगमा है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, सबसे पहला नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में। और इस फिल्म में जिन लोगों ने अभिनय किया था उनमें मुख्य कलाकारों में भारत भूषण, मीना कुमारी, सुरेंद्र, मनमोहन कृष्ण वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। तो आइए आज के इस सफ़र का आगाज करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। गीत मेरे मन में

तो गंगा की मौज में जमुना का तारा, बेहद खूबसूरत यह नगमा फिल्म बैजू बावरा से, यह फिल्म आई थी 1952 में। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगा

इस पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत में, जिसमें हम सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत यानी गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत और सदाबहार नगमों के साथ हाजिर हैं। तो आए इस सफ़र को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं, और ये गीत है संगम फिल्म से। राज कपूर साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में खुद राज कपूर साहब, वैजयंतीमाला राजेंद्र कुमार और इफ्तिखार राज मेहरा, नाना पालेसकर, ललिता पवार वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। ये फिल्म राज कपूर साहब की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। ये राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी। इसे ज़्यादातर राज कपूर साहब की शानदार और प्रसिद्ध रचना भी माना जाता है, क्योंकि ये उनके सबसे अच्छे कामों में से एक है। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं मुकेश साहब और वैजयंतीमाला की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में। संगीत है शंकर जयकिशन साहब का और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल सी विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

एक छोटे से वक्फे के बाद रात की इस खामोश फिजा में जहाँ चांद भी कुछ कहने को बेताब है और हवाएं किसी पुरानी मोहब्बत का पैगाम लेकर गुजर रही हैं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, जिसमें गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत सदाबहार नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज। दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत का आगाज इजहार से नहीं बस एक एहसास से होता है। नजर किसी को तलाशती है मगर पहचान बिल्कुल नहीं पाती और दिल बिना वजह मुस्कुरा उठता है। आज की यह नाजुक सी हसीन सी पेशकश में भी कुछ ऐसा ही है। ये नगमा भी कुछ इसी तरीके का है जिनमें इश्क की एक छोटी सी दास्तान है। साल 1953 की फिल्म आह से हसरत जयपुरी की कलम से निकला ये बेहद खूबसूरत नगमा, जिसे अपनी दिलकश आवाजों से सजाया है लदा जी और मुकेश साहब ने, और जिसकी धुन शंकर जयकिशन साहब ने तैयार की है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नाम है और उनकी धुनें हमेशा याद रहेंगी। तो जिससे आपकी नजर तलाश रही है, ढूंढ रही है और नहीं मिल पाई, अगर आपका जिगर उसे महसूस कर चुका है तो ये गीत उसी के नाम कर दीजिए, अपने प्यार के नाम कर दीजिए। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आ फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा

लता जी और मुकेश साहब की इसी आवाज के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। गीत मेरे मनमीत से अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार आपके साथ रहेंगे मंजू। कल पुनः हमारी और आपकी मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।

मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकननेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थंकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कल ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग और नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में कल सहयाद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित युद्धाभ्यास उदारा शक्ति 2026 में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक पूरी की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन दोनों देशों में भारतीय वायुसेना की तैनाती, उसकी संचालन की पहुंच, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारियों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 MHz पर। ये कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। तो मेरी कहानी का वो किरदार हो जो इसे पढ़ने लायक बनाता है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है राग पहाड़ी और इसे आपके लिए लिखा है शीतल शाह ने। आवाज भी उन्हीं की है। तो आइए सुनते हैं कहानी राग पहाड़ी।

पहाड़ों में गूंजा राग बसंत बहार, कुसुम ने सूटकेस सीट के नीचे रखी। दिल्ली से काठगोदाम जाने वाली एक्सप्रेस सही समय पर रवाना हुई। इस वक्त उसे अपने दिल की धड़कन रेलगाड़ी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज महसूस हो रही थी। खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी, लेकिन नजरों के सामने नजारे नहीं बीते दिनों की झांकियां तैरने लगी। अतीत के झरोखों से 9 साल पहले का लम्हा लम्हा नजर आने लगा। कहने के लिए कुमाऊं का वह पहाड़ी गांव छोटा सा था, पर कुसुम का सारा संसार उसमें समाया था। स्कूल, सखियां, संगीत, सबसे खास उसका बेस्ट फ्रेंड सौरभ। पगडंडियों पर हंसते खेलते स्कूल जाना, लौटने पर कभी देवदार और साल के पेड़ों की ओट में लुका छुपी खेलना, तो कभी झरने के किनारे रेडियो रेडियो का खेल रचाना। वादियों में उनकी खुशियां गूंजती थी। कुसुम और सौरभ को पहाड़ों से टकराकर लौटती उनकी आवाज की गूंज सुनना बहुत पसंद था। वो गीत सुनाती, राग पहाड़ी उसका सबसे पसंदीदा राग था। सौरभ रेडियो संचालक की अदायगी करता, कभी क्लासरूम में सिखाई गई कविता की पंक्तियां दोहराता, तो कभी अपने मन से गढ़ी हुई तुकबंदी सुनाता। धरती के साथ जब तक रहेगा नब, कुसुम का साथ देगा तब तक सौरभ। कुसुम की आवाज की स्वर लहरिया और छल छल बहते झरने की अटखेलिया। किशोरावस्था की कच्ची धूप में आत्मीय रिश्ते पक्के हो रहे थे।

लेकिन 9 साल पहले की वह घटना अभी भी भुला नहीं सकी थी। पापा ने रातों रात गाँव छोड़कर दिल्ली जाने का फैसला किया। 12 साल की कुसुम के मन पर मानो कोई बिजली सी गिरी। अलबत्ता वह जानती थी कि अगर पापा ने यह फैसला लिया है तो उसके पीछे खास वजह जरूर थी। पापा सत्य प्रताप भारद्वाज गांव के विकास कार्यों में सिर्फ इसलिए सक्रिय नहीं थे कि वे सरकारी विभाग के प्रमुख इंजीनियर थे, परंतु वह गांव उनके पुरखों का बसाया हुआ था। बचपन के मित्र राजदीप पाराशर उस गांव के मुखिया थे। भाभी संगीता ने कुसुम को मुंह बोले बेटी माना था। उसे बचपन से संगीत की तालीम भी देती थी। यही कारण था कि कुसुम को कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। सत्य प्रताप ने अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ अपने गांव के हितार्थ लिया। विकास कार्यों के साथ साथ वे पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते थे। बतौर मुखिया राजदीप पाराशर उन तमाम परियोजनाओं को अपने हाथों में लेते थे। बात उस वक्त की है जब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने वहां 5 सितारा हिल रिसोर्ट बनाने के लिए राजदीप को प्रस्ताव भेजा। इसके लिए सरकारी अनुमति की दरकार थी। सत्य प्रताप ने इसकी समीक्षा की और प्रारंभिक मंजूरी दे दी, लेकिन परियोजना के 3 महीने के बाद उस पर रोक लगा दी। कहा, राजदीप, आवंटित की गई जमीन से 3000 वर्ग फीट पर अधिक तुमने निर्माण काम किया है। वह भूमि खेत की जमीन है। नियम के अनुसार ये अतिक्रमण के वर्ग में आता है। नक्शे के हिसाब से तुम्हें इसमें सुधार करना पड़ेगा, इसीलिए निर्माण काम रोका गया है। यार, रिसोर्ट में मिनी गोल्फ कोर्स को जोड़ने के लिए ये काम करना पड़ा। गोल्फ टूरिज्म को आजकल दुनिया में कितनी तवज्जो मिल रही है। जरा सोचो यार, इस रिसोर्ट में अगर मिनी गोल्फ कोर्स जुड़ जाएगा तो हमारे गांव में पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा। सुनो, अगर गोल्फ कोर्स जोड़ना चाहते हो तो अलग से प्रस्ताव भेजना पड़ेगा। मेरी मानो तो झील के उस पार गांव में गोल्फ कोर्स के लिए आसानी से मंजूरी मिल जाएगी। एक अलग से अर्जी दे दो। भाई सत्या, थोड़ा एडजस्टमेंट करवा दो ना। घी गिरेगा तो हमारी थाली की खिचड़ी में ना। हमारे गांव के लाभ को छोड़कर दूसरों के बारे में क्यों सोचे यार। भाई राजदीप, यह गांव हम दोनों के पूर्वजों ने मेहनत और समर्पण से बनाया था। आज हम दोनों में इतना सामर्थ्य है कि अपना योगदान आसपास के गांवों के विकास के लिए भी कर सकते हैं, ताकि

गांव के लोगों को भी रोजगार के नए आयाम मिले। देख यार, संसाधनों और मजदूरी की बात करें तो यहाँ रिसोर्ट बनाना हमारे लिए ज्यादा आसान और फायदेमंद रहेगा। समाज कल्याण तो बाद में भी होता रहेगा। राज, पिछले इन सालों में तुम कितने बदल गए हो। यार देख, यही वक्त है, तुम और मैं मिलकर दौलत कमा सकते हैं। देख राज, दोस्ती अपनी जगह है, कायदे कानून अपनी जगह। भाई सत्य प्रताप, मैं तो दोस्ती के बारे में भी सोच रहा हूँ, दोस्त की बेटी के बारे में भी। इसीलिए तो तुम्हारी बेटी कुसुम और अपने बेटे सौरभ में कोई अंतर नहीं समझता। मेरे घर उसका आना जाना, संगीता से उसका इतना लगाव, मुझे कोई एतराज नहीं है। सोचना तो तुम्हें है कुसुम के बारे में, उसके भविष्य के बारे में। धन राशि कमा लोगे तो उसका भविष्य सुरक्षित कर पाओगे। राज, मेरी दुख तिरक पर हाथ मत रखो। जब सूत्रों से मुझे पता चला कि तुमने पिछले कई परियोजनाओं में पैसों की गफलत की है, मैंने यकीन नहीं किया था क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कानून के दायरे में रहो। दोस्ती भुलाकर कानूनी कार्यवाही करने पर मुझे मजबूर मत करो। इससे राजदीप का गुस्सा हद पार कर गया। मौका देखकर उसने गंदी चाल चली

विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में सत्य प्रताप जब नैनीताल गए, तब राजदीप ने उन तमाम लोगों को बुलाया जिनके खेतों की जमीन निर्माणाधीन रिसोर्ट में आ रही थी। मुंह मांगे दाम पर जमीन खरीद ली। दूसरे दिन सरपंच की बैठक बुलाई। गांव के लोग भी उपस्थित हुए। इनमें ज्यादातर राजदीप के आदमी थे। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इन दिनों क्यों सत्य प्रताप अपने गांव के विकास परियोजनाओं में रोड़े डालते हैं, जानबूझकर नीति नियमों का वास्ता देकर काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। राजदीप ने भी ढोंग रचा, बोला, हां, मेरे सत्या से इस पर जब बात हुई थी तब वह आसपास के गांवों को ज्यादा तवज्जो दे रहा था। भीड़ में से कोई चिल्लाया, कहीं इसमें उसका कोई निहित स्वार्थ तो नहीं है। प्लान के मुताबिक कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सत्य प्रताप के खिलाफ लोगों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। यह सब जब हो रहा था तब कुसुम सौरभ के साथ पढ़ाई कर रही थी, राजदीप के घर पे थी। नारेबाजी सुनकर वह सहम गई। संगीता ने खिड़कियां बंद कर दी, पर्दे लगा दिए। बच्चों का मूड बदलने के लिए वह बोली, सौरभ, आज कौन सी कविता सीखी स्कूल में, चलो दोहराओ तो। उसके बाद कुसुम एक अच्छा सा गीत राग पहाड़ी में सुनाएगी। सौरभ ने टेबल पर रखी चम्मच को अपना माइक बना लिया, दोनों के सामने बैठकर सुनाई अपनी कविता। खड़ा हिमा

पहले बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। दो लोगों की ऑडियंस ने खूब तालियां बजाई। कुसुम ने भी गीत सुनाया। फिर संगीता बोली, कुसुम चलो जल्दी खाना खा लो और सो जाओ, कल सुबह स्कूल जाना है ना बेटा।

कुसुम को कमरे में सुलाकर संगीता बाहर आई। सौरभ ने पूछा, माँ सत्यप्रताप अंकल और पापा इतने अच्छे दोस्त हैं ना, मगर आज पापा ने उनका बचाव क्यों नहीं किया? संगीता बोली, बेटा तुम अभी छोटे हो, वक्त और हालात के साथ रिश्तों में बदलते समीकरण को इस वक्त समझ नहीं पाओगे। हर रिश्ता एक अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरता है, कभी दौलत तो कभी किस्मत हर संबंध को आजमाती है। अगर रिश्ता सच्चा हो तो उस अग्नि परीक्षा में पास हो जाता है और संबंध और भी पक्का हो जाता है। अब इन दोनों की दोस्ती भी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है, तुम फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, चलो तुम भी जाकर सो जाओ। राजदीप घर लौटे। संगीता ने कहा, ईश्वर का दिया सब कुछ हमारे पास है, अचानक ये दौलत कमाने की इतनी भूख क्यों? अरे तुम दोनों के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं। अरे सुनिए, नैतिकता को दांव पर लगाकर कमाया गया धन हमारे किस काम का? अब सौरभ भी बड़ा हो रहा है, आपकी करनी

0: का उस पर भी तो असर होगा।
1: संगीता, बहती गंगा में हाथ धोने में अकलमंदी है, वरना तब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग जाएगी खेत। संगीता ने बस आंखें बंद कर ली और दोनों बच्चों के बारे में सोचने लगी। वहां सत्यप्रताप भी कुसुम के बारे में सोच रहे थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली से आए पर्यावरण संरक्षण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने प्रस्ताव दिया, पहाड़ी पारिस्थितिकी संतुलन समिति में उन्हें सलाहकार के रूप में नामांकित किया गया था। इस नए पदभार को संभालने के लिए उन्हें दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था। सत्यप्रताप कुसुम के बारे में सोचने लगे और सालों से राजदीप की दोस्ती उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गई थी। दिन भर इस धर्म संकट से जूझते रहे। उन्होंने अपने आला अधिकारियों से कहा कि कुछ सोचकर बताता हूं। वे अपने गांव लौट आए। सत्यप्रताप ने कहा, भाभी जी, कुसुम स्कूल से आ गई क्या? हाँ भाई साहब, संगीत का रियाज कर रही है। तभी राजदीप ने व्यंग्य में कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी के हमारे घर अच्छी देखभाल होती है। सत्यप्रताप कुसुम को लेकर घर तो आए, पर पिछले दो दिनों में हुई घटनाक्रम के बारे में सुना, रात भर चिंतन किया। राजदीप का बदलता रुख और दौलत कमाने की अंधी दौड़ अब मित्रता की आहुति ले रही थी। उसके परिवार से कुसुम की आत्मीयता आगे चलकर कहीं बोझ न बन जाए, यही सोचकर सत्यप्रताप ने फैसला किया। दो फोन कॉल लगाए, अपने आला अधिकारियों से बातचीत की। अगली सुबह कुसुम को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली जाते वक्त पापा ने कहा था, पता है कुसुम, भगवान कृष्ण ने मथुरा क्यों छोड़ी थी? पूरी तन्मयता से जिस राज्य को संभाला था उसे छोड़कर नई द्वारिका नगरी क्यों बसाई थी? बेटा, क्योंकि जिस प्रजा से वो इतना प्रेम करते थे वे उनकी रक्षा करना चाहते थे, पर प्राणों से प्यारी जनता को रण में झोंक कर उनका अहित मंजूर नहीं था। इस वक्त तुम छोटी हो, इस वक्त शायद तुम्हें मेरा फैसला समझ नहीं आएगा, लेकिन कुसुम, वक्त आने पर तुम जान जाओगी। इतना याद रखना बेटा कि जब बात सिद्धांतों की हो तो समझौता नहीं किया जाता। ट्रेन में बैठी बैठी कुसुम अपने सिद्धांतवादी पापा की बात समझने लगी थी। जिन परिस्थितियों में मजबूर होकर पापा ने गांव छोड़ा था, कमोबश कुछ ऐसे ही हालात कुसुम की जिंदगी में आ गए थे। वरना दिल्ली में सबसे लोकप्रिय टेलीविजन रियलिटी शो को बीच में छोड़कर वह अपने गांव वापस जाने के बारे में क्यों सोचती? पापा की कही बात मन में गूंजने लगी, किस्मत जब एक दरवाजा बंद करती है तब कुदरत हजार नई खिड़कियां खोल देती है। बंद दरवाजे की दहलीज पर सर पीटने के बजाय जरूरत है खुले झरोखों की ओर रुख मोड़ने की।

कुसुम के ख्यालों का सिलसिला अचानक टूटा। काठगोदाम स्टेशन आ गया था। अपनी सूटकेस और हैंडबैग लेकर प्लेटफॉर्म पर उतरी। वक्त ने कैसी करवट ली है ना। 9 साल पहले जिस गांव को छोड़कर गई थी, आज वहीं वापस लौटी है। गांव तक जाने के लिए टैक्सी उसका इंतजार कर रही थी। वह गाड़ी में बैठी। 9 साल बाद फिर से पहाड़ों की आगोश में

रेडियो स्टेशन की ओर से आयोजित राग पहाड़ी उत्सव में भाग लेने के लिए उसे आमंत्रित किया गया था। कुसुम सोचने लगी, अगर टेलीविजन पर उस रियलिटी शो के आधार पर उसे गाने के लिए निमंत्रण मिला है तो बात अजीब है ना, क्योंकि जिस शो की वह टॉप 5 प्रतियोगी में शुमार हो चुकी थी उसी शो में वह बदनामी का शिकार भी तो हुई थी। सोशल मीडिया में लोग उसे ट्रोल करने लगे थे। इसके बावजूद कुमाऊं के उस रेडियो स्टेशन से उसे उत्सव में लाइव गाने के लिए बाइज्जत बुलाया गया। एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ हैरानी हुई, क्योंकि टेलीविजन पर शो के दौरान बतौर निर्णायक आए उस सेलिब्रिटी ने रिहर्सल के दौरान कुसुम से बदतमीजी की थी। कुसुम ने आयोजकों से उस सेलिब्रिटी के खिलाफ शिकायत दायर करने की अपील की। प्रतियोगिता का फिनाले नजदीक था, शो के टीआरपी पर असर होने का डर था, तो कुसुम को खामोश रहने की सलाह दी गई। इससे पहले कि वह कोई कदम उठाती, उस सेलिब्रिटी ने अपने चैनल पर कुसुम का चरित्र हनन किया, कहा कि जीतने के लिए प्रतियोगी ने उस पर डोरे डाले थे। लाखों फैन फॉलोइंग वाले चैनल पर कही गई यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पापा की मौत के बाद कुसुम ने अपनी गायकी को जीवन का आधार बनाया था, लेकिन इस घटना ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। सहमी हुई कुसुम नहीं जानती थी कि कहां जाए। पापा की बात याद आई, किस्मत एक दरवाजा बंद करे तो कुदरत हजार खिड़कियां खोल देती है। उसी रात ईमेल पर राग पहाड़ी उत्सव के लिए आमंत्रण आया, स्टेशन से पिकअप और सर्किट हाउस में रहने की व्यवस्था का मैसेज भी था। टैक्सी रुकी, ख्यालों का सिलसिला भी थम गया। उसी झरने के किनारे सर्किट हाउस था। 5 साल पहले वहां भूस्खलन की खबर टीवी पर देखी थी। उसके दिल में मानो कोई भूचाल आ गया था। वो कितना रोई थी। इस वक्त वो गांव का नजारा देख रही थी। सब कुछ बदला बदला लग रहा था। कमरे में सामान रखकर कुसुम रिसेप्शन में आई। मैनेजर ने बताया कि शाम को राग पहाड़ी उत्सव की टीम उससे मिलने आएगी। कुसुम ने अपनी शॉल ओढ़ी, झरने के पास टहलने गई। बचपन की सारी खूबसूरत यादें पलकों पर आरोहित होने लगी। बचपन का हर पल संगीता आंटी और सौरभ की सुखद स्मृति से सजा था। दिल्ली जाने के बाद पापा के कहने पर उसने सौरभ से संपर्क तोड़ दिया था। न अपना पता या नंबर उसे दिया, न कभी उसे कॉल किया। लेकिन जब टीवी पर लैंडस्लाइड की खबर आई थी तो लैंडलाइन पर उसने फौरन फोन किया था, लेकिन पता चला कि वह नंबर अस्तित्व में नहीं है। कुसुम की नजर इस वक्त देवदार के उस पेड़ पर पड़ी जिस पर सौरभ ने लिखा था, जब तक रहेगा धरती के संग नभ, तब तक साथ रहेगा कुसुम संग सौरभ। सौरभ को याद करके इस कदर सस्कियां भरने लगी कि पीछे से जब किसी ने उसका नाम पुकारा उसे सुनाई नहीं दिया। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कुसुम ने मुड़कर देखा तो लंबे कद का एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। कुसुम की आंखों में आंसुओं का सैलाब था, ठीक से उसको देख नहीं पाई। उस नौजवान ने अपने रुमाल से कुसुम के आंसू पोंछे, रूहानी आवाज में बोला, चाहे जितनी तेज हो हालात की आंधी, कुसुम कभी आंसू नहीं बहाती। बुत से बैठी कुसुम टकटकी लगाकर उसे देख रही थी। हौले से पूछा, सौरभ?

जी हाँ मैडम जी, राग पहाड़ी उत्सव में आपका स्वागत है। इस बार आंसुओं की धारा खुशी की थी, गले से आवाज निकल नहीं रही थी, बस अपनी उंगलियां सौरभ के चेहरे पर घुमा रही थी। सिसकी भरने के बाद गला साफ किया और पूछा, ये कोई ख्वाब तो नहीं है? 9 साल का अंतराल बुरा सपना जरूर था, वह बीत गया है कुसुम। अब तुम और मैं आमने सामने हैं, यह इस लम्हे की हकीकत है। सौरभ, तो इस उत्सव में भाग लेने के लिए तुमने मुझे न्योता भेजा है? देश की उभरती हुई गायिका का स्थानीय रेडियो के क्रिएटिव हेड सौरभ पराशर की ओर से हार्दिक स्वागत है। सौरभ, तुम्हें मेरा मेल आईडी कैसे मिला? 9 साल से शिद्दत से तुम्हें तलाशता रहा, अचानक टीवी पर रियलिटी शो में तुम्हें देखा, तुम्हें फॉलो करता रहा। तो फिर तुमने सोशल मीडिया पर मेरे बारे में भी, तो मुझे अपनी कुसुम पर यकीन है, आदर्शवादी पापा की सिद्धांतवती बेटी कुसुम शो छोड़ सकती है पर समझौता नहीं कर सकती। कुसुम की आंखें फिर से भर आई, सौरभ ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हें पल पल याद करने का यही सिला है, लंबी तपस्या के बाद शुभ फल मुझे मिला है। सौरभ, हालात ऐसे थे कि मैं तुम्हें संपर्क नहीं कर पाई, मगर बताओ संगीता आंटी कैसी है? और अंकल, माँ तुम्हें देखने के लिए बेताब है।

पता है तुम्हें कुसुम, रेडियो स्टेशन के वे अब सीनियर प्रोग्राम प्रोड्यूसर है। अरे वाह, सीरियसली? तो मुझे बताओ कि ये नाम राग पहाड़ी उत्सव उन्हीं ने दिया होगा। ओ मैडम, सुनना चाहती हो तो सुनो, राग पहाड़ी उत्सव ये नाम उनके बेटे ने दिया है, यानी मैंने, क्योंकि तुम्हें ये राग बहुत पसंद है ना। कुसुम मुस्कुराकर बोली, ये राग तुम्हारे बगैर अधूरा था सौरभ। सौरभ ने कुसुम का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर कुसुम ने अचानक पूछा, अच्छा बताओ अंकल कैसे हैं? उसने जवाब दिया, कुछ साल पहले यहां भूस्खलन हुआ था कुसुम, बहुत सारे मकान बह गए थे, पिताजी भी उस वक्त। ओ आई एम सो सॉरी, मगर पता है उस वक्त कुसुम माँ के साथ मैं रेडियो स्टेशन में था। कुसुम सौरभ से लिपट गई। भगवान की दया है कि तुम ठीक हो सौरभ। पता है उस वक्त मैंने टीवी पर यह खबर देखी थी, मैंने फोन भी लगाया था, मैं कितनी डर गई थी। कुसुम, याद है तुमसे मैंने वादा किया था, 1000 साल तक कुसुम और सौरभ साथ रहेंगे। वक्त के दरिया में बस 9 साल बह गए हैं, अभी तो सदियों का साथ बाकी है। राग पहाड़ी में तुम्हारी आवाज का गूंजना बाकी है, मेरे दिल के आंगन में तुम्हारा खिलखिलाना बाकी है, बसंत बहार में बगिया का महकना बाकी है।

ये थी कहानी राग पहाड़ी, आपको सुना रही थी शीतल शाह, और ये कहानी भी उन्हीं की लिखी हुई थी। परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती की। तो अब मुझे इस कार्यक्रम से दीजिए विदा। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर ईमेल कीजिएगा fmgoldchannel@gmail.com पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्र पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता

0: देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश से संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हित की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कल ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार और रोजगार तथा कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में कल सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन एगुलेरा ने कल नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। ये दौरा संग्रहालय के आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ जिसमें उनके साथ प्रथम सचिव और क्यूबा के अन्य राजनयिक भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने संग्रहालय के विभिन्न दीर्घाओं का भ्रमण किया जिसमें स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्रियों की विरासत और उनके योगदान को प्रदर्शित किया गया है। हिरू एगुएरा ने कहा कि भारत और क्यूबा के बीच 66 वर्षों से अधिक समय से राजनयिक और द्विपक्षीय संबंध हैं। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की तिसा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की ल्यू सेंग सू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारत की जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। भारतीय टीम एफआईएच हॉकी पुरुष विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वैगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम चार में पहुंचने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना था। अब भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरे दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed National Office Bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's National Vice Presidents and General Secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed National Office Bearers. The BJP president said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of BJP to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हम सफर बंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकेंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज़ के साथ।

महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत, फिल्म का नाम गीत गाया पत्थरों ने, संगीत था रामलाल का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1964 में और इस फिल्म का निर्माण किया था वी शांताराम ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी जितेंद्र और राजश्री ने और ये इन दोनों की पहली फिल्म थी। अगला गीत रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिल्म का नाम लव मैरिज और आवाज़ें थी लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की, संगीत शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था सुबोध मुखर्जी ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद और माला सिन्हा ने। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में आप ही के लिए।

चौदहवीं का चांद फिल्म से रफ़ी साहब की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये खूबसूरत गीत। संगीत था रवि का और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। ये फिल्म आई थी 1960 में। इस फिल्म का निर्देशन किया था मोहम्मद सादिक ने और निर्माण किया था गुरुदत्त साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान ने। 1959 की फिल्म कागज़ के फूल की असफलता के बाद गुरुदत्त साहब के लिए ये फिल्म कामयाब फिल्म रही और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी ये फिल्म। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पतंग से। इस गीत का संगीत है चित्रगुप्त का और गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

101 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:40 और 2 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में।

0: फिल्म उजाला से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में सुना आपने ये गीत। संगीत था शंकर जयकिशन का और ये फिल्म आई थी 1959 में और ये एक रोमांटिक क्राइम फिल्म थी जिसमें शमी कपूर, माला सिन्हा, राजकुमार, लीला चिटनिस और टुनटुन ने अभिनय किया था। इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था नरेश सहगल ने और इस फिल्म का संदेश यही था कि ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। और अगला गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में।
1: वो जब याद आए बहुत

फिल्म का नाम पारसमणि और आवाज़ थी रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार असद भोपाली। ये फिल्म 1963 में प्रदर्शित हुई थी और ये एक संगीतमय फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था बाबू भाई मिस्त्री ने और ये फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही थी और इस फिल्म को मायामणि शीर्षक से 1964 में तमिल में रिलीज किया गया था। अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और आशा जी की आवाज़ में फिल्म उस्तादों के उस्ताद से।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश के पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकननेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के

0: वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान ये बात कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल ग्रीक के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरा पेट्रिटिस से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने मौजूदा भू राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। दोनों ने एक दूसरे के संपर्क में बने रहने पर भी सहमति जताई। उन्होंने मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्दिलट्टी से भी टेलीफोन पर बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा ओडिशा के तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर हुआ। मालवाहक पोत एमवी ओशियन विनर पर सवार चालक दल के सदस्यों में से 20 चीनी, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेशी नागरिक है। ये पोत ओडिशा से 72,100 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर सिंगापुर जा रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। भारत में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन एगुइलेरा ने कल नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। ये दौरा संग्रहालय के आउटरीच कार्यक्रम की अंतर्गत हुआ, जिसमें उनके साथ प्रथम सचिव और क्यूबा के अन्य राजनयिक भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने संग्रहालय की विभिन्न दीर्घाओं का भ्रमण किया, जिसमें स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्रियों की विरासत और उनके योगदान को प्रदर्शित किया गया है। श्री एगुवेरा ने कहा कि भारत और क्यूबा के बीच 66 वर्षों से अधिक समय से राजनयिक और द्विपक्षीय संबंध हैं। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपी चंद को चीन की लियू शेंग शू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित किया। भारतीय टीम FIH हॉकी पुरुष विश्व कप के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हार कर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वैगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना था। अब भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरे दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. The BJP president said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of BJP to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first 2 stanzas at Congress programmes. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, as an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. National Testing Agency, NTA, has issued a show cause notice to Messrs. Adequity Career Technology

तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को होगा, हम मिलेंगे समंदर किनारे किसी हल्के से सुनहरे थोड़े धुंधलाए से रेत के घर में। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ ना सको, और ना ही हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह ना दे सके। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर बंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 3 सेकेंड। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ के साथ।

प्यार में ऐसा ही होता है, ना घर चाहिए होता है ना ही दुनियादारी चाहिए होती है, बस साथी की एक नज़र ही काफ़ी होती है। और वैसे भी कहा जाता है कि आशियाने तो ज़मीन पर बनते हैं, दीवानों की दुनिया तो दिल से बनती है, जहाँ पर ना शर्तों की जगह होती है ना ही कोई शिकायत होती है, बस एक साथ होता है जो ताउम्र साथ चलता है। अगला गीत आप ही के लिए।

तुमने जब पहली बार मेरा हाथ थामा था, तुमने जब पहली बार मेरा हाथ थामा था तो मैंने ये जाना कि दो शहरों की दूरी सिर्फ हाथों को थाम लेने भर से कम हो जाती है।

छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, अब मैं कोई और हूँ, वापस तो आकर देखिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

मुझे खींच ही लेती है हर बार उसकी मोहब्बत, मुझे खींच ही लेती है हर बार उसकी मोहब्बत, वरना बहुत बार मिली हूँ आखिरी बार उससे। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, 100.1 MHz पर। मैं हूँ आपके साथ, आपकी रात की हम सफ़र मंजू। 2:38 और 15 सेकंड हुए हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत आप ही के लिए।

0: चले।
1: वैसे ये बात तो सच है कि प्यार का जहाँ बसाने के लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, प्यार और विश्वास होना चाहिए और तैयार हो जाती है एक अलग दुनिया। यकीन ना हो तो करके देखिए। अगला गीत आप ही के लिए।

वाकई मौसम मस्ताना तो है, पर रास्ता बिल्कुल भी अनजाना नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, यानी कि अपनी रात की हम सफ़र के साथ। और मेरे साथ जुड़ने का मतलब है दिल से दिल तक जुड़ना। अगला गीत आप ही के लिए।

अगर बात सपनों तक पहुंच गई है तो प्यार का मामला काफ़ी आगे निकल चुका है और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्यार का इजहार कर लिया जाए। अब जब मौसम रोमांटिक हो चला है तो फिर कार्यक्रम

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी रूपा धवन। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इनके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 केंद्रों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके बाद GRSE भवन में MSME के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री युवा भारती

0: क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बगान सुपर जायंट्स के बीच फुटबॉल ड्यूरेंट कप का फाइनल मुकाबला भी देखेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोफ से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर हुआ। मालवाहक पोत MV ओशियन विनर पर सवार चालक दल के सदस्यों में 20 चीनी, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेशी नागरिक है। ये पोत ओडिशा से 72,100 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर सिंगापुर जा रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में कल सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed National Office Bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's National Vice Presidents and General Secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed National Office Bearers. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first 2 stanzas at Congress programmes. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, as an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Raksha Mantri Rajnath Singh will participate in the Bhumi Pujan ceremony in Kolkata today for 5 facilities of Garden Reach Shipbuilders and Engineers GRSE Limited and Yantra India Limited at Garden Reach. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will also attend the event. An interaction session with MSMEs at GRSE Bhavan will be held after the foundation stone laying ceremony. Raksha Mantri will witness the final of Durant Cup between East Bengal FC and Mohan Bagan Super Giant at Yuva Bharti Kridangan later in the day. The Indian Air Force IAF has successfully concluded its participation in 2 international flight engagements, including Exercise Pitch Black 2026 in Australia and Exercise Udar Shakti 2026 in Malaysia. Defence Ministry said that the dual nation deployment underscored the IAF's operational reach, advanced tactical coordination and commitment to strengthening strategic defence partnerships across the Indo-Pacific region. National Testing Agency, NTA,

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां वक्त हुआ है इस वक्त 3:11 और 24 सेकंड। आप हैं हमराही कार्यक्रम में रूपा धवन के साथ, और आज हम कौन से गीत सुनेंगे और क्या उनकी भाषा होगी, क्या उनकी भावनाएं होंगी जानेंगे, लेकिन इस गीत के बाद शायद इस गीत से ही आपको कुछ पता चल जाए कि आज हम किस शब्द पर या किस भाव पर आपको गीत सुनाएंगे हमराही कार्यक्रम में। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और लीजिए, आ रहा है पहला गीत आपकी ओर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।

दिल की जमी पर जब यादों की फसल बोगी, दिल की जमी पर जब यादों की फसल बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना ही रोगे। दिल पे बहुत मुश्किल है दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। किसी और को क्यों देखें ये आंखें थी मेरी, जब दिल पर लिखा है नाम सिर्फ तेरा। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज हम हमराही में आपको गीत सुनवाएंगे दिल शब्द के ऊपर, दिल की गहराई और जज्बात। दोस्तों, कोई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि दिल की गहराई क्या है, दिल के जज्बात क्या हैं। इनमें जितना आप उतरेंगे उतना ही आप डूबते चले जाएंगे। रात की इस बेहद खूबसूरत खामोशी और इस खामोश सफ़र के साथ ही आप और हम सुन रहे हैं दिल की धड़कनों को, कार्यक्रम हमराही के ज़रिए। रात के इस पहर में जब शहर की हलचल थम जाती है, तब एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बातें करता है, दिल। रात के सन्नाटे को चीरती हुई दिल की धड़कनों के साथ

आज हमराही में सुनेंगे दिल शब्द पर फिल्मी युगल गीतों को जिन्होंने दो दिलों को जोड़ा है, और शायद दो दिलों के मिलने का कुछ गहरी वजह भी हो सकती है। तभी तो दो दिलों की मुलाकात होती है, और जब दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं तब एक दूसरे को दोनों तड़प तड़प कर कुछ इस तरह से पुकारते हैं।

ये दिल कितना पागल है, हर पल तेरे ही ख्वाब ये बुनता है, रहता है मेरे सीने में, धड़कन पर तेरी ही सुनता है।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

तो लीजिए जनाब, आपकी और हमारी मुलाकात का सिलसिला बरकरार है, जारी है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही कार्यक्रम सुन रहे हैं आप अपनी ही दोस्त रूपा के साथ, और आज हम बातें कर रहे हैं दिल की, और दिल की धड़कनों से जुड़े गीत आपको हम सुनवा रहे हैं हमराही कार्यक्रम में।

जी हाँ, तस्वीर जब दिलों पर उभरती है तो अपनी अज़ीज़ को कुछ इसी तरह से याद करती है। और अगर बात करें नज़र की, तो नज़रें क्या कहती हैं? दिल की नज़र जब दिल से मिलती है तब क्या असर होता है, आइए जानते हैं फिल्म अनाड़ी का गीत सुनकर। लता जी और मुकेश साहब का स्वर।

साथियों कहते हैं दिल बहुत जिद्दी होता है, पर जब इसे किसी से मोहब्बत होती है तो ये बहुत मासूम हो जाता है। इस रात की गहराई में छुपाए हुए दर्द जज्बात भी बाहर आने लगते हैं, और ऐसे में जब किसी की याद आए तब रफ़ी साहब, मुकेश साहब, महेंद्र जी और लता जी की आवाज़ों से सजा हुआ जब गीत सुने हम, तो इससे बेहतर तो कोई मरहम हो ही नहीं सकता। संगम फिल्म का भी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश साहब, महेंद्र जी और लता जी के स्वर में। ये गीत आप सब के लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

साथियों, रात के इस पहर में दिल अक्सर पुरानी यादों के पन्ने पलटता है, जिन्हें हम टूटकर मोहब्बत करते हैं। उनके बिना जब रहना पड़ता है तो दिल संभाले नहीं संभलता। कुछ ऐसा ही जज्बा है इस प्यारे से गीत में, जिसे हम शामिल कर रहे हैं फिल्म रात से। लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ से सजा ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

जनाब, समय बीतता है, जमाना बदलता है, लेकिन दिल की भाषा हमेशा एक सी रहती है। चाहे 70 का दौर हो या आज का ज़माना, जब दो दिल आपस में बातें करते हैं तो धड़कनें संगीत बन जाती है। अगला गीत दिल की पुकार के नाम, दो रास्ते फिल्म का ये गीत आपके लिए, रफ़ी साहब और लता जी के स्वर में।

आइए चलते हैं अब रेट्रो दौर में, जहां मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले के उस क्लासिक युगल गीत की तरफ जिसने दिल चुराने का सभी को हुनर सिखाया। यादों की बारात का ये गीत आशा भोसले और रफी साहब के स्वर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी का एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 केंद्रों के भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके बाद GRSE भवन में MSME के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री युवा भारतीय क्रीडांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बगान सुपर जायंट्स के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का फाइनल मुकाबला भी देखेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान श्री जयशंकर भारत और रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय तथा

0: वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा और इस तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर हुआ। मालवाहक पोत एमवी ओशियन विनर पर सवार चालक दल के सदस्यों में 20 चीनी, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेश का नागरिक है। यह पोत ओडिशा से 72,100 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर सिंगापुर जा रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय तटरक्षक और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। महाराष्ट्र और जर्मनी के हिस्से राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में कल सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हिस्से के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौहली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस बीच कोच पुलेला गोपीचंद ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में शानदार उपलब्धि के लिए दोनों खिलाड़ियों की प्रशंसा की और कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इस जोड़ी ने एक साथ खेलते हुए काफी प्रगति की है। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। वेनेगर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महबश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives, aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first 2 stanzas at Congress programs. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, as an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Raksha Mantri Rajnath Singh will participate in the Bhumi Pujan ceremony in Kolkata today for 5 facilities of Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSC Limited and Yantra India Limited at Garden Reach. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will also attend the event. An interaction session with MSMEs at GRSC Bhavan will be held after the foundation stone laying ceremony. Raksha Mantri will witness the final of Durant Cup between East Bengal FC and Mohan Bagan Super Giant at Yuva Bharti Kridangan later in the day. The Indian Air Force IAF has successfully concluded its participation in 2 international flight engagements, including Exercise Pitch Black 2026 in Australia and Exercise Udar Shakti 2026 in Malaysia. Defence Ministry said that the dual nation deployment underscored the IAF's operational reach, advanced tactical coordination and commitment to strengthening strategic defence partnerships across the Indo-Pacific region. National Testing Agency NTA has issued a show cause notice to Messrs. Adequity Courier Technologies Private Limited for lapses in the conduct of the All India Ayush Postgraduate Entrance Test AIA PGET examination at a centre in Jaipur. NTA has informed that pending resolution of the notice, the empanelment of Messrs. Adequity with the agency stands suspended with immediate effect. Earlier, due to a power supply failure at a

जब आप दुखी होते हैं तो जीवन आप पर हंसता है, और जब आप खुश होते हैं तो जीवन आप पर मुस्कुराता है। लेकिन जब आप दूसरों को खुश करते हैं तो जीवन आपको सलाम करता है। जी हाँ, सलाम करते हैं हम भी, और नमस्कार करते हैं आप सभी को आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हमारे जुड़े सभी श्रोताओं को, हमारे सभी साथियों को, और स्वागत करते हैं आप सभी का तहे दिल से। ये समय ऐसा समय है जब रात तो बीतने को है और दिन की जो उजली लालिमा है वो आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब चंदा अपने रास्ते पर जाए और सूरज अपने रास्ते पर आए, एक सुनहरे रथ पर तैयार होकर। तो इसी समय को मद्देनजर रखते हुए हम और आप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अरुणिमा की। अरुणिमा, जो सुनहरी किरणों से सजा रथ आपके लिए तैयार रहता है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, रूपा है आपके साथ और आप हैं हमारे साथ। तो इसी तरह जुड़ी रहिए, बने रहिए, बातें होंगी ढेर सारी और गीत भी हम सुनेंगे ढेर सारे।

साथियों, सकारात्मक सोच आगे बढ़ने का एक बेहद प्रेरणादायी सबब बन जाती है। जब कुछ नहीं सोचता तब हमारे साथ हमारे सकारात्मक विचार चलते हैं। अरुणिमा में सकारात्मक विचारों के साथ सुनेंगे कुछ चुनिंदा गीतों को आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जाली नोट फिल्म से ये गीत आप सभी के लिए।

जिंदगी में मुश्किलें हमारा इम्तिहान लेने आती हैं, हमारी राहें रोकने नहीं आती, क्योंकि हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और ताकत से परिचित नहीं होते। पर जब हमें परेशानियां घेर

जाती हैं तब अपने भीतर छुपी ताकत से हम परिचित होते हैं। इसीलिए तो किसी ने खूब कहा है कि हमें इम्तिहान से घबराना नहीं है, बल्कि हंसकर हर तूफान का सामना करना है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है इस वक्त 4:33।

और 54 सेकंड आप हैं अरुणिमा में अपने ही दोस्त रूपा के साथ। तो दोस्तों, मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जब जिंदगी है, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, तो क्यों ना जिंदगी को हंसते हंसते बिताया जाए और गाते गुनगुनाते गीतों के साथ इस सफ़र को और भी मजबूत बनाया जाए, खुद को भी और दूसरों को भी जो हमारे साथ रहते हैं या हमारे आसपास रहते हैं।

अपनी हार से जब हम सबक लेते हैं तो हर गलती हमारे लिए एक खाली पन्ना लेकर आती है। उस पन्ने पर हम एक नई इबारत खड़ी कर सकते हैं, यानी जो गलतियां हमने की उनसे हम सबक लेकर एक नई शुरुआत भी तो कर सकते हैं। तो क्यों ना इन गलतियों से हम आज ही सबक लें और आज ही हम एक नई शुरुआत करें।

और यकीन मानिए, जब अपनी गलतियों से हम सबक लेकर एक नई शुरुआत करेंगे तो हमारी सफलता चारों तरफ अपनी गूंज सुनाई देगी, हमारी सफलता चारों तरफ अपना शोर मचा देगी। और ये ऐसा शोर होगा जब हर तरफ से हमारे लिए तारीफ हो रही होगी, हमारा प्रोत्साहन हो रहा होगा। गिरते को तो सभी गिराते हैं, लेकिन जो गिरकर उठता है उसको कोई कोई सराहता है और वही पहचान दुनिया में बनाता है। हमारा जीवन और सुख दुख धूप और छांव की तरह हमारे साथ साथ चलते हैं। आशा और निराशा का नाम भी जिंदगी है। इसे गम के सागर में डुबोने की बजाय हमें छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए। और जब हम ऐसा करने लगेंगे तो देखिएगा जिंदगी कितनी हसीन लगेगी और ये बहारें और भी हमारे जीवन के साथ जुड़ती चली जाएंगी।

रात कितनी भी गहरी हो, भोर होने से रोक नहीं सकती। रुकावटें कितनी भी हों, तेरी राह रोक नहीं सकती। पंख समेट कर बैठना छोड़, खुले आसमान में उड़ना सीख। तो खुद अपनी तकदीर है, हर गिरते कदम से उठना सीख। जी हाँ, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हमें हर गलती से एक सबक लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते रहना है, और उसी हिम्मत और जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये जीवन है और जीवन सुख दुख धूप और छांव का खेल है। आप जुड़े हुए हैं अरुणिमा में अपनी दोस्त रूपा के साथ, और आप सुन रहे हैं अरुणिमा कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

हमारे छोटे छोटे प्रयास चाहे वो धीमी गति से हो, रुक जाने से तो कहीं बेहतर है। हर छोटा कदम आपको मंजिल के करीब ले जाता है। अरुणिमा का सफर यहीं तक। रूपा को अनुमति दीजिए, आपसे थोड़ी देर में फिर से मुलाकात होगी भोर सुहानी में। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, तब तक के लिए विदा लेती है रूपा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठकें की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 केंद्रों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके बाद जेआरएसई भवन में एमएसएमई के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री युवा भारती क्रीड़ांगण में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर ज्वाइंट्स के बीच डूरंड कप का फाइनल मुकाबला भी देखेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुंबई में कल सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस रायन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। पनामा ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि उड़ीसा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर से ये दुर्घटना हुई। जहाज एमवी ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक था। जहाज उड़ीसा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर रवाना हुआ था। मानवाधिकार संगठन बलूच यकजहती कमेटी ने बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में नागरिकों पर पाकिस्तानी बलों द्वारा किए गए ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। संगठन ने इस घटना को राज्य प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है।

साथियों, सपनों की उड़ान आसमान तक लेकर तो जाएगी, हर मेहनत की रोशनी हर अंधेरे को मिटाएगी। हर सुबह विश्वास जगाकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेहनत ही हमें मंजिल दिलाएगी। जी हाँ, मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद यकीनन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता तो है, साथ ही हमें एक नई दिशा भी प्रदान करता है। स्वागत है आप सभी का भोर सुहानी कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम जुड़ा है एक नई ऊर्जा के साथ, आपके साथ, जिसे आप सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो जब हमें नई दिशा प्रदान करता ही है ईश्वर, तो क्यों ना इस खूबसूरत और बेहतरीन सुबह में भी आज हम स्मरण करें उस परमात्मा का जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया। भोर सुहानी में आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और सुप्रभात।

वाकई इस सृष्टि का निर्माण करने वाले परमात्मा का जब भजन सुनो तो आनंद ही आ जाता है। ऐसा लगता है कि आज का दिन तो हमारा बन ही गया। दोस्तों, सुबह का ये खूबसूरत पल नई भोर का संदेश तो लेकर आया ही है, साथ ही अपने दिलों को एक नई ऊर्जा और उमंगों से भी भरने के लिए आया है। ये नया सवेरा हमारे सपनों को साकार करने आया है, तो क्यों ना दोनों हाथों से दिल खोलकर इसका स्वागत करें और इस शांत और पावन समय में अपने मन को थोड़ी सी शांति और एक हल्की सी मुस्कान दें। लीजिए एक लंबी गहरी सांस और हमारे साथ महसूस कीजिए इस नई सुबह की ताजगी को।